0: वंदे मातरम।
1: वंदे

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026, समय 5:57 9 सेकंड। आरंभ आज की सभा का मंगल ध्वनि के साथ।

FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। इंतजार बस कुछ क्षण का।

साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित

0: लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलेकैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु वही चित्त संकट के समय पर्वत शिला के समान सुदृढ़ हो जाता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 197। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। इसका पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहम, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7:00 से 7:30 हम है राही प्यार के।

सुबह 8:15 से आपको सुनाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शेफाली शाह पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। संपादन सहयोग काजल भद्रकी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 सुनेगा चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम मैटिनी शो। दिन में 12 से हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से। दोपहर 2 से त्रिवेणी, दोपहर 2:30 से आपको सुनाएंगे सदाबहार नगमे।

दोपहर 3 बजे से मन चाहे गीत, दोपहर 2:30 से सुनिएगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक विजयमाल, लेखन रवि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता बीडी माथुर। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुन सकेंगे। संपादक सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनवाएंगे आपको तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे विशेष जयमाला, ये प्रस्तुत कर रही है अभिनेत्री नरगिस, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का चौथा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्लोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से और 10 बजे से सुनेगा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनाएंगे ढलती जाए रात।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम वंदनवार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अंग्रेजी में समाचार सुनिए 7:05 पर। हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग का समय रहेगा 7:10 पर।

आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति कार्यक्रम सुप्रभात सुनिए 7:40 पर। समाचार प्रभात का समय रहेगा 8 बजे।

विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार सुनिए 9:30 पर और 10 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम नमस्ते हिसार का।

विविध भारती मुंबई की ही प्रस्तुति कार्यक्रम रंग तरंग का समय रहेगा 11 बजे और 12 बजे सुनिए कार्यक्रम पल पल दिल के पास।

कार्यक्रम गीत गुंजन का समय रहेगा 2:30 पर, और विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति कार्यक्रम सखी सहेली सुनिए 3:00।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम रहेगा शाम 6:20 पर, और 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम युवा उमंग। भेंटवार्ता रहेगी ज्योतिष विज्ञान या अंधविश्वास प्रीति शर्मा जी के साथ।

कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में सुनिए हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन और तरीका।

कार्यक्रम हमारे गांव सुनिए 7:30 पर। इस पर सुनेंगे आप बढ़ती गर्मी के मौसम, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण।

कार्यक्रम परिक्रमा सुनिए रात 8 बजे और 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम खुला आकाश, एक ही फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस

टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर

0: निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंक संघटनानाम् च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतम् सूचीबद्धानाम् 67,200+ यावत् आतंक संघटनानाम् विरुद्धम् प्रबलम् समन्वितम् च कार्याचरणाय आग्रहम् कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्याम् विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमे विभागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और

0: संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरोन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework.

नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। धरती पे स्वर्ग है वहाँ, अरे बड़े वृक्ष हैं जहाँ, तपती धूप जलते पाँव, लगाए पेड़ मिलेगी छाँव। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगा के करे श्रृंगार। पेड़ों से वायु, वायु से आयु, जिंदगी में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। सूरज, जल, पेड़ पौधे, हवा, भोजन हमारी पहली आवश्यकता है, जो कुदरत के कई रूपांतर हमने मिले हैं। हमें इसके उपयोग का सारा अधिकार न होके अपने हिस्से के उपयोग का है। संतुलित विकास के लिए इसका उपयोग किया जा तो हम प्रकृति की रक्षा कर पाओगे।

आज प्रकृति के साथ जो हमने जाने अनजाने में गलती करी उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज जल और वायु के संतुलन में कमी आई है। विकास की अंधी दौड़ में या भूल

आदत होगी, हमने अपने पैर के कुआड़ी मार ली। आज के जमाने में प्रकृति की सुंदरता को समाप्त करके विकास की रास्ते खोजने हम शुरू कर रहे हैं। पुराने टाइम में हम सब प्रकृति पर आश्रित थे, सामाजिक धार्मिक कार्यों की वजह से हम प्रकृति की पूजा कराया करें, पेड़ों को देवता स्वरूप माना जा, कुदरत आदमी के लिए वरदान है। प्रकृति ने सारे संसाधन हमें निःशुल्क प्रदान करे, हम अपने लालच और लोभ के लिए कुदरत के दिए संसाधनों को इस कदर इस्तेमाल करने लगे जिस तरह प्रकृति का संतुलन डगमगाता जा रहा है। कुदरत ही वो चीज है जो जल वायु पेड़ पौधे पर्वत वन्य सब मिलके वातावरण को सुंदर बनावे। रंग बिरंगे फूलों से लदी वादियां, कलकल करती नदियां और झरनों का नजारा सबने सुथरा लागे। अपने तन मन और मस्तिष्क के तनाव को दूर करने के लिए ये प्रकृति हमें अपनी गोदी में रखे।

कुदरत का नजारा बहुत लंबा चौड़ा है। पंच तत्व जल वायु अग्नि आकाश जल मिलके इसका निर्माण करें। आदमी तो एक छोटा सा अंश है। आदमी जब इन पंच तत्वों के साथ अच्छा समायोजन करेगा, जब भी उसका जीवन सुखी होगा।

आज के टाइम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषण का भयानक रूप आज हम देखने लाग रहे हैं। कटते जंगल और घटते मंगल को एक ज्वलंत समस्या मान के हर आदमी ने पेड़ पौधे लाने चाहिए। आज के टाइम सरकार, सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रदूषण निवारक संस्थाएं पेड़ों की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का अभियान चला रही है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जैसे ऐसे आंदोलन हुए जिससे हमारे पेड़ों का संरक्षण हुआ। राजस्थान में बिश्नोई समाज ने पेड़ों की कटाई के विरोध में बलिदान दिए।

आज के दिन में जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। लोगों को मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी फर्नीचर उद्योग धंधों के लिए हम पेड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पर्यावरण को शुद्ध रखने वाले प्राकृतिक साधनों में हरियाली, वृक्षावली, पेड़ों का बहुत महत्व है। अशुद्ध वायु को शुद्ध करके स्वास्थ्य के अनुकूल बनावे है हमारे पेड़। पेड़ों के आकर्षण से बादल जल बरसावे जिससे धरती उपजाऊ बन जा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्या खड़ी है। आइए प्रण लें, हर व्यक्ति पेड़ लगावे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो पेड़ पौधे लगाए थे, जिनके फल और छाया आज हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर आज हम पेड़ पौधे लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियां फल और छाया प्राप्त कर सकेंगी और अपने स्वर्णिम इतिहास को जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। किसी भी आयोजन, जन्मदिन, कोई भी बार त्योहार का मौका हो, पेड़ लगावे, जीवन बचावे, जिससे हमारी धरती हरी भरी हो, हमारा प्राकृतिक वातावरण साफ सुथरा हो। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त मीना ठकराल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। दिन है आज 23 मई का, वार है शनिवार, शक संवत 1948, मास ज्येष्ठ मास, तिथि षष्ठी, सूर्यास्त का समय, सॉरी माफ कीजिएगा, सूर्योदय का समय 5:30 पर और सूर्यास्त 7:12 पर। राहु काल का समय रहेगा प्रातः 9 से 10:30 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर लगभग 11:55 से 12:48 तक। और अब शुरुआत करते हैं अपनी ईश्वर वंदना के साथ।

आज है शनिवार और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं, इसलिए यह दिन आत्मचिंतन, अनुशासन और सेवा भावना के लिए विशेष माना जाता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। गरीबों एवं जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शनिवार यह संदेश देता है कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं बल्कि अनुभव और मजबूरी का माध्यम है। और अब बात करते हैं आज के मौसम की। आज हिसार में गर्मी का असर काफी तेज रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 23 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं यानी लू चल सकती है। हवा में नमी कम रहेगी जिससे अधिक गर्मी महसूस होती है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में गर्म मौसम बने रहने की संभावना है। अब इसकी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। दिन भर पर्याप्त पानी पिए, धूप में निकलते समय सिर ढककर रखें, हल्का एवं तरल भोजन लें, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक बाहर जाने से बचें,

और अब आज का सुविचार। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है, रास्ते कठिन लगते हैं, मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देता और मन बार बार यही सोचता है क्या सच में सब ठीक होगा। लेकिन श्रोताओं, यही वह समय होता है जब इंसान की असली ताकत की परीक्षा होती है। जीवन कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। यदि आज कठिन समय है तो विश्वास रखिए कल बेहतर भी अवश्य होगा। प्रकृति हमें हर दिन बहुत कुछ सिखाती है। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो कुछ समय तक वह अंधेरे में रहता है, उसे धूप नहीं मिलती, खुला आसमान भी नहीं मिलता, लेकिन वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे वह बीज अंकुर बनता है, फिर पौधा, और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर दूसरों को छाया देने लगता है।

अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता और मेहनत करने वाले इंसान को सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता।

और अब वाचन करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के 5वें श्लोक का। उदरेत आत्मा आत्मनम ना आत्मनम अवसादेते आत्मे ही आत्मयो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनव। इस अत्यंत गहरे और प्रेरणादायक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। जीवन में हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी हमारा अपना मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी हमारा अपना मन है। यदि इंसान अपने विचारों को सकारात्मक रखे, अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए और कठिन समय में भी धैर्य ना छोड़े तो वह जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। लेकिन यदि वही मन डर निराशा आलस्य और नकारात्मकता से भर जाए तो इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि इंसान का असली युद्ध बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर चलता है। हर दिन हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं और तो कुछ हमें रोकते हैं। जब हम बार बार स्वयं से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तब धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन जब वही इंसान कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं से कहता है मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, समय कठिन है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, तब वही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अब एक श्लोक और लेते हैं। ना ही कल्याण कृते कश्चित दुर्गाति तात गच्छति और ना ही कदितम दुर्गति तात गच्छति। इस छोटे से श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवन की बहुत बड़ी और सुंदर बात समझा

आते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रिय, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सच्चे और अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी उन्हें तुरंत सफलता

कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते। हो सकता है उनका फल तुरंत ना मिले, लेकिन समय आने पर वही कर्म जीवन को सुंदर दिशा देते हैं। जैसे कि एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद फल की उम्मीद नहीं करता, वह धैर्य रखता है, नियमित मेहनत करता है, पौधे की देखभाल करता है और समय आने पर वही बीज फल देता है। उसी प्रकार जीवन में भी हर अच्छी सोच ही मन को शांत प्रदान करती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में सुने आप समाचार प्रभात।

समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और आई

0: क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस के मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता आपसी सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए

0: प्रतिलीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्य दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहित्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम

0: विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion.

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी के लिखे गीत के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में किरण कोटियाल का लिखा और राजू सिंह का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम प्रेम का गेम। बोले आई वांट टू फॉल फॉर लव।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में यारियां फिल्म का गाना लगी थोड़ा, और इरशाद कामिल थे गीतकार और संगीतकार प्रीतम। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और अमित कपूर की आवाजों में बेशरम फिल्म का ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं मीत ब्रदर्स अंजन और स्टीफन बेन की आवाजों में शिमला मिर्च फिल्म का गाना कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स अंजन की है तर्ज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट ऑफ द 30th एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इंतजार बस कुछ क्षण का।

0: आकाश में समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
0: सर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी
0: श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। यह महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है।

0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 की डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिकता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इनके पास अवैध दस्तावेज थे। ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पलडाम्बे में एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इनके पास अवैध दस्तावेज थे। ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पलडाम्बे में एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है।
1: Distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments.
0: की चेतावनी जारी की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Neena Rakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. A correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The President was speaking after hosting a banquet in honor of her Cyprus counterpart Nikos Christodoulidis and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक
1: of the Central Board of Directors of the RBI chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai.

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम। देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती राज कर रहे
2: हैं। आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है, उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मगर को प्रत्यक्ष रूप से आप है, और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहें?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजन संगीतकारों का परिवार। कई सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका

0: मेरी आयु रही होगी 9 साल की, 15 साल की जरूरत है। तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया जी, और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिराने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
1: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर,
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ, हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ, भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से,
0: बड़े सहज रूप,
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरू तो मेरा पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े ही उसे तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहां इस तरह की सुविधा मिलती है, तो हिंदू विश्वविद्यालय में और ये सुविधा है कि थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का रेडियो में, तो 9 साल के बाद बराबर हो जाती भी थी, तो कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई, तो मुझे पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आप कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह थी।
1: अच्छा।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली, मेरे पिताजी का भी इसे बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गाय

0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से संगीत साधन सर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक फ्रेज गाते हैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: है, उसकी बू जो है उसको कैसे आना है, तो मुझे कई इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से ये रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का बार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को है।
1: हाँ।
0: चाहे लड़की हो या लड़का।
1: हाँ।
0: पिताजी भेंट में दे देते हैं, देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय, तो आपकी मिठाई को लेके होता या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: तो हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वॉयलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वॉयलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप का जो नखरा होता है वो जाता है, उसका आनंद जो आता है उसके बारे थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आप
1: भी मिलती है और ताने भी पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ जिनके होते थे उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी, तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको
0: कभी भी वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ का, बड़े गुलाम

0: करे सुनकर खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया
1: जी,
0: खूब उन्होंने प्रोत्साहित दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ वो भी बजाते थे, जो भी बजाते हैं खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ ये मुश्किल से समझ में आता
1: बिल्कुल,
0: था।
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी,
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत मैंने शुरू में ही कहा था उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजती थी, कॉमन जैसे कि यमन है तोड़ी है इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक के विशेषताएं क्या है, मींड गामा के वो और एक ही मन से वो समझ पाते दोनों में क्या फर्क
1: प्रकार की आत्मा होती है।
0: हुँ?
1: कुछ नया क्रिएशन
0: तो
1: आपका, क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली पढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं, गहरा समुद्र है
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिला है, तो हैं ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकते हैं उस आत्मसा।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा?
0: मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ एक घटना बता, गुरुजी रहते थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, एक बार मुझे हमारे कॉलेज में के लिए, तो मेरा कार्य सीनियर स्टूडेंट्स है जो आप बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब जाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच हुआ था, शुरू किया, हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग, तो उसके बाद मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको कहा अब मैं निश्चिंत ही ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, उनको लोग बाहर जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके रोक दिया था मैंने और उसके बाद वो आके बैठे, उसके बाद जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया तो और पूरा एक लव चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर ही हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का? तो लोग कहा कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया। आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं, उसको इसको मिलाओ। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मैं
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहरा,
0: हो सकता है कि जल्दी का जमा है तो जल्दी फटाफट कर कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो से कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम सभी शिक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद डॉक्टर एन राजन जी, आप प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते email.com
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे ब्रॉडकास्ट ऑफ द 30th एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपको वापस लिए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीखू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का

सत्या ने अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्ण घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने थाने जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

अग्रवाल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याली की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्यधारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज काबी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीम द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई यूनियन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच साठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती है और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती है। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों सम डे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी। ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना ठकराल। शुरुआत करते हैं हिसार और आसपास के इलाकों की कुछ स्थानीय खबरों की, सामाजिक हलचलों की और दिलचस्प जानकारियों की। जुड़े रहें मेरे साथ। सबसे पहले बात हिसार शहर की, जहाँ इन दिनों सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में आकाशवाणी हिसार परिसर में प्रसारण सेवा के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कलाकारों, साहित्य प्रेमियों और संगीत से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं को भारतीय संस्कृति, रेडियो परंपरा और कला से जोड़ना भी था। कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया। कई वरिष्ठ नागरिकों ने पुराने रेडियो दौर की यादें साझा की और बताया कैसे कभी रेडियो हर घर की पहचान हुआ करती थी।

रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सग से मोरी चुनरी गई गई गई सग से मोरी चुनरी

हिसार में शिक्षा और साहित्यिक गतिविधियों भी लगातार गति पकड़ रही हैं। हाल ही में आयोजित अक्षरम 2026 कार्यक्रम में कला, साहित्य और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस आयोजन में प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक की उपस्थिति चर्चा का केंद्र रही। उन्होंने युवाओं से कहा कि प्रतिभा तभी आगे बढ़ती है जब मेहनत और अनुशासन उसके साथ जुड़ते हैं। कार्यक्रम में कविता पाठ, नाट्य प्रस्तुतियां, पुस्तक प्रदर्शनियां और युवा कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में काले छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हुए। और अब बात मौसम की। हिसार, हांसी, बरवाला, फतेहाबाद, सिरसा सहित आसपास के इलाकों में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है और दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की संभावना जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में शरीर में पानी की कमी बहुत जल्दी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। गांवों और शहरों दोनों जगह अब ठंडे पेय, छाछ, फलों का अधिक सेवन कर रहे हैं। बाजारों में भी गन्ने का रस, तरबूज और खरबूजे भी की मांग बढ़ रही है। खेतीबाड़ी की बात करें तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में

किसान खरीफ फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग की ओर से किसानों को समय समय पर आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। कई गांवों में कृषि जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां विशेषज्ञ किसानों को बेहतर बीज चयन, सिंचाई प्रबंधन और मौसम के अनुसार फसल तैयार करने की सलाह दे रहे हैं। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मौसम साथ देगा और अच्छी फसल होगी। हिसार के इन दिनों सफाई और पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाओं और स्कूलों द्वारा पौधारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए हैं।

दोस्तों, देश भर में अब गर्मी की छुट्टियों का माहौल भी दिखाई देने लगा है। बच्चों में छुट्टियों का लेकर खास उत्साह है। कई परिवार घूमने फिरने की योजनाएं बना रहे हैं, तो कई कुछ बच्चे समर कैंप और नई गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी छुट्टियों को रचनात्मक बनाने में जुटे हैं। और अंत में एक प्रेरणादायक बात इसी के साथ जुड़ी हुई, जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर मन शांत और इरादे मजबूत हों तो हर कठिन रास्ता आसान बन जाता है। धैर्य और मेहनत की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और अब सुनते हैं एक नगमा।

0: ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान। आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।
1: अर्ज किया है राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया।

0: बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हील ने राजे को समझाया,
1: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
5: विल यू बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड थॉमस अल्वा एडिसन,
1: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: क्या आप परेशान हैं?
6: मैं परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
7: आज मैं
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
8: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
1: या आप प्यार में हैं?
9: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
10: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें,
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
11: मैं अलबेली घूमूं अकेली।
1: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
12: अभी न जाऊं छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान
1: कैसा हो।

0: यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर।
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हर सुबह एक मौका है
1: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
1: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
1: आकाशवाणी हिसार के साथ।
2: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
5: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
1: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।

0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
1: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range।
0: ये आवाज है नए भारत की। लंबे वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी। ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
2: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।

0: है भारत के अदम्य साहस की।
1: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhara Range।
0: ये आवाज है नए भारत की। लंबे वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
2: और अब वक्त हो चला है दोस्तों हमारे ज्ञानवर्धक जी के सेगमेंट का, जहां हम आपसे पूछते हैं कुछ रोचक सवाल और आप उसका उत्तर दे सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर। और आज का पहला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? और दूसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर देने वाले को हम सुनाएंगे उन्हीं का पसंदीदा गीत।

और अब कार्यक्रम में वक्त है एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से मिलने का जिनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है। उनका जीवन यह सिखाता है, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उनके सपनों को रोक नहीं सकती। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम की, जिन्हें पूरी दुनिया मैग्निफिशेंट मैरी के नाम से जानती है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मंगते चुंगनाई जांग मैरी कॉम है। वे एक बेहद साधारण परिवार से थी। उनके माता पिता खेती करके परिवार चलाते थे और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन में ही मैरी कॉम ने कठिन परिस्थितियों को बहुत करीब से देखा। कई बार घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैरी कॉम बचपन में एथलेटिक्स की ओर आकर्षित थी, लेकिन बाद में उनकी रुचि बॉक्सिंग में बढ़ी। उस समय समाज में लड़कियों के लिए बॉक्सिंग जैसा खेल चुनना आसान नहीं माना जाता था। लोगों का मानना था कि यह खेल केवल लड़कों के लिए है, लेकिन मैरी कॉम ने समाज की सोच से ऊपर उठकर अपने सपनों को चुना। उन्होंने छुप छुप कर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में उनके परिवार को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। जब उनके पिता को पता चला तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चोट लगने से उनकी बेटी का भविष्य प्रभावित ना हो जाए। लेकिन मैरी कॉम का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने परिवार को भी यकीन दिला दिया कि वे कुछ बड़ा कर सकती हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनको राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने का मौका मिला और उन्होंने शुरू किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। वे 6 बार विश्व चैंपियन बनी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। साल 2012 में समर ओलंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। यह पल केवल मैरी कॉम के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी यूं ही सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। सबसे और उससे पहले एक सुनते हैं प्यारा सा गीत।

वो करके न दिखा।

यह पल मैरी कॉम के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है, उन्होंने शादी और बच्चों के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। आमतौर पर लोग मानते हैं कि शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बाद करियर संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैरी कॉम ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। बच्चों की देखभाल के साथ साथ उन्होंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी कर दिखाया। मैरी कॉम का जीवन अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वह हमेशा कहती हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत और त्याग छिपा होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है, कोशिश करते रहना ही सफलता का रास्ता है। आज मैरी कॉम सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी है। वह उन लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण है जो बड़े सपने देखती हैं लेकिन परिस्थितियों से डर जाती हैं। उनके जीवन पर आधारित फिल्म मैरी कॉम भी बनाई गई, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण गांव की लड़की ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इस फिल्म ने ही युवाओं को खूब प्रेरित किया। तो श्रोताओं, मैरी कॉम की कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखे तो हर मंजिल हासिल कर सकता है। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस इंसान के अंदर होता है।

और अब सुनते हैं हमारा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम इतिहास इस सप्ताह का। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं बताता, बल्कि यह उन घटनाओं, संघर्षों, उपलब्धियों और प्रेरणाओं का आईना होता है जिन्होंने समाज और देश को नई दिशा देने का काम किया। हर सप्ताह इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज होती हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख और प्रेरणा बन जाती हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास की उसी रोचक और प्रेरणादायक यात्रा पर। इस सप्ताह भारत ने विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय कराया था। राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर और मजबूत भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया। उस समय पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। इस सफलता के बाद देश भर में गर्व और उत्साह का माहौल था। भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। इसी सप्ताह भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के संविधान निर्माण के दौरान भी अपना अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे हमेशा एक साधारण और विनम्र व्यक्ति की तरह जीवन जीते रहे। उनका जीवन यह हमें सिखाता है, सच्ची महानता पद या शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता से होती है। इतिहास के इसी सप्ताह में विश्व व्यापार और समुद्री खोजों का एक नया अध्याय भी शुरू हुआ था, जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहली बार समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। इस घटना ने भारत और यूरोप के बीच व्यापारी संबंधों को नई दिशा दी। इतिहासकार मानते हैं कि इसके बाद दुनिया की राजनीति, व्यापार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत उस समय मसालों और व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता था। यही कारण था कि कई विदेशी यात्री भारत की ओर आकर्षित हुए। भारतीय राजनीति के इतिहास में भी यह एक सप्ताह बेहद भावुक और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह घटना पूरे देश के लिए गहरा सदमा था। राजीव गांधी ने भारत में तकनीक, कंप्यूटर और दूर संचार के विकास को नई दिशा दी थी। आज भारत जिस डिजिटल प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसकी नींव रखने वालों में से उनका प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनकी स्मृति में देश भर में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया जाता है और लोगों को शांति तथा एकता बनाए रखने की प्रेरणा दी जाती है।

और अब वापस चलते हैं जी के सेगमेंट की ओर। हमने एक सवाल पूछा था, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, जिसका सही उत्तर है आम। और इसका सही जवाब दिया है

गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी कीरत ने। और इनका अब हम सुनाते हैं पसंदीदा गीत।

और दूसरा प्रश्न पूछा था हमने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। और इसका सही जवाब दिया है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा ने। आइए सुनते हैं इन्हीं का पसंदीदा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपको वापस ले चलते हैं हम विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर। इंतजार बस कुछ क्षण का।
1: दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली, इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन।

ग्यावस थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे।
1: बिल्कुल जी, 102.6 मेगाहर्ट्ज, ये जो सेंसस प्रणाली चल रही है, प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, अपना जो कंट्रीब्यूशन है इसमें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन
उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा

लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों,

हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते

जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है, और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने

अपने सपने पूरा करने के मौके हैं। ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है, मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी

0: लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे, वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने। आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ।
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार।

0: मंगलवार दिन में 3 बजे
1: सखी सहेली।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जिंदगी का सफर तो सुरीला उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन रह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है, जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं।

हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है, यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज़ दी है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहां दो अलग अलग महिला आवाजें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीत ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहाँ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा,
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद सहित देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाएगी। इस उद्देश्य से कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हरियाणा के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं तथा एकीकृत ईवी एवं ऑटोमोटिव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रणनीति पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट से संबंधित केस प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसमें हरियाणा में संभावित निवेश एवं विनिर्माण अवसरों को रेखांकित किया गया। बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विनफास्ट कंपनी की कार को चलाकर भी देखा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत और सरकार के बीच मजबूत समन्वय से हरियाणा आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक पहचान स्थापित करेगा। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कल पंचकुला स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों, क्रेच, बाल देखभाल संस्थानों एवं शिशु निकेतन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रुति चौधरी ने बच्चों से सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्धि करवाई जा रही सुविधाओं, खानपान और देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने

0: प्रशासन के स्कूल शिक्षा निदेशक नितेश सिंगला ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा भीषण गर्मी के दौरान भी स्कूल खुले रखने का सख्त नोटिस लिया है। श्री सिंगला ने कहा कि ऐसे सभी स्कूल आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे। आवश्यकतानुसार स्कूल 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के केवल ऑनलाइन कक्षाएं जारी रख सकते हैं। 8वीं तक के बच्चों की किसी भी माध्यम से कक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें पूरी तरह छुट्टी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आज से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूल भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जींद नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू सिंगला ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में बताया कि अस्पताल में एडवाइजरी के अनुसार सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्मी में बाहर न निकलने की सलाह दी।
1: आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी यही सलाह है कि वो बहुत ज्यादा जरूरत हो इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी ही हॉस्पिटल में आए, बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी लू लगने से उस पेशेंट को उल्टी दस्त लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है।
0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: मंगेशकर की ही है, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मेल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और

ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपीडी एयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के

और के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं। बिल्कुल आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया समझो। अरे वाह क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी। कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। क्योंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आ रहा फिल्म का, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो है महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद है या याद है उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद है। जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं। आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत, पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं इस बार। फिल्म का नाम है महाभारत। Oh.

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डालें, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वही आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चले सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है। और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है लिखते हैं, ये गाना मेरा फेवरेट है फिल्म उत्सव का।

मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद है, उनका जिक्र वो करें। साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने सी आर को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला।

और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गुल डब्बा गुल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा, अगर आप हैं हमारे साथ तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर की और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचना ही थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज की सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा, लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरेला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखे ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो देखें। जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

आपकी सफलता पर तालियां न बजाए तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित

0: करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती।

0: चलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ की प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी एस एन

शोक आंखों में तितलियां लेकर आबिदा अब अदा से लहराती एक दुल्हन की तरह शर्माती तू नहीं है तो रात सुनी है इश्क की ताए ना तो सुनी है मरने वालों की जिंदगी।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार है पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: कोई मारे कोई किसी को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमती, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैख्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता है, ये कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डेनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से करुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी है और संगीतकार मदन मोहन है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से चंद्रकांत

प्रतिमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू, यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा टांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, नमस्कार। मनचाहे गीत।

0: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
1: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
0: आने दिया जाए।
2: महाराणा की जय।
3: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
0: मंत्री जी,
1: अन्नदाता,
0: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
1: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अति सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
0: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
0: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने इन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
0: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी क्षमता का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी।
4: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
4: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
5: जी। महाराज,
0: राणा हाड़ा को एक शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
1: जी महाराणा।
0: सावन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।

0: अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
1: इतने उतावले क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला में।
0: ये लो।
1: कितनी अच्छी है ये माला।
0: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
1: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
0: अच्छा,
1: कोई सुनता ही नहीं।
2: तारा, तारा आई।
1: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
3: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
0: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
3: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
0: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
1: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे? ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
1: मैं वधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
1: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
1: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
1: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधुयामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
1: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ।
3: नहीं जाती?
1: अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे।
3: हाँ, अरे अरे,
1: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
1: तारा सुन
3: जी,
1: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हरियाणी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
1: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये। पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे सोने की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिरसंचित अभिलाषा पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के बारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
0: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
0: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे हाँ, अब ठीक है। देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख मोती की नत, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम
3: सभी मेरे देवता।
0: सच
3: मैं तुम्हारी पुजारी।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है
0: तुम सच
4: मुगल बादशाह
0: सुंदर हो।
4: नगर की राजकुमारी
0: चकोर
4: अपनी विशाल सेना
0: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
4: नगर के राजा ने
3: स्वामी
4: हमारे महाराणा से
3: पागलपन
4: सहायता की प्रार्थना की है। महाराणा के
0: तुम कुछ कहते हो और मैं सुनता रहूं।
4: अनुसार
0: मेरी रानी
4: राजपूत
0: मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
3: हूँ।
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ मुक्त हूँ।
3: सुना आपने
0: प्रिय
3: छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई।
3: सुनिए नगाड़ी की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह मेरी हाड़ी रानी मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
3: जानती हूँ पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतम मैं
3: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं। कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखरियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
3: स्वामी ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी
3: प्रेम प्रेरणा देता है मोह विचलित करता है।
0: रानी
3: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं?
3: तो ठीक है स्वामी आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो
3: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी
3: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो रानी सुनो तुम
3: नहीं सामन नहीं मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सती रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधु सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत नहीं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
3: छोड़िए मुझे मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं ठहरो रानी तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा।
3: तुम्हें शीघ्रता कीजिए स्वामी आइए मैं आपके भाल पर रख स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित में लौटा
3: ना, ना।
0: तो तो तुम्हारा ये रूप यौवन।
3: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
3: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको मेरा शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रंग से उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रणसिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: महारानी जी, जब रणसिंह आती है तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देखो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हार जान की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
4: आई।
2: आई रानी जी,
3: आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी बच्ची, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना। आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरे मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे। पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा। रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ।
3: जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे बहुत सुंदर लग रही है, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है ला, ला तारा मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा एक बार तूने ही कहा था ना सावन की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस अब बहुत विलंब हो रहा है तारा चलिए नगर ये ना लीजिए मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे दो। कहना कहना ये विजय मार तब उसके लिए लिए विजय मार।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामान तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं दारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
3: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सैलानी दी उन्होंने?
0: हां सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
3: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
3: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
3: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
3: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
3: लड़सिंह, ये क्या लाए हो? हमारी रानी का भग्न शीर, ये क्या किया तुमने लड़सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार

0: थाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे इसलिए।
1: मैं समझ गया, जो कुछ तू है उसके लिए मैं ही दोषी हूँ। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा दिया।
0: हरी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो,
2: विजय हमारी है, भवानी हमारे साथ है।
3: बादशाह की सेना उल्टे पैर फाड़ रही है।
0: सच रणसिंह, हम विजयी हुए?
3: हाँ सामन, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामन,
0: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामन, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामन ठहरिए, ठहरिए सामन।
4: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
5: जी सामंत।
4: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, हाँ। रानी, मेरी हरी रानी, मेरी विजय माल

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफी छोटा तरफ से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। तो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह,
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था। मैं दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। केशर पटरिया के गाना और उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहां पे बैठते थे और फिर वो वहां पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए, जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती में आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफा लोग हमसे रिलेटेड भी होते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हजार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास से बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें
2: पिताजी चबूतरे में,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। तो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके।
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं में, 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओरे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसमें ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक भागे होती थी।
2: हाँ।
3: तो उसी तरह से कि कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहां ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहां ले आए,
2: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
3: कहां ले आए राजा कुमारिया में,
2: मतलब बुंदेलखंड
3: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहां ले आए, कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहां ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
2: तो मजा आ गया मुझे,
3: बहुत ही मजा आ गया, बहुत तो यही था। फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव। तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीने 21 दिन चलता था वो।
2: अच्छा।
3: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
2: अरे
3: मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय,
2: ठीक है।
3: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
2: तो बुंदेली में था ये।
3: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
2: हाँ।
3: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाथ विद्यालय एनएसडी की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, काफी बड़े एक्टर
2: हैं, पन्ना के ही है,
3: पन्ना के ही है। तो वो एनएसडी से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, फाइव स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला दो दो किलो चावल लेके चलना है, एक किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहां पे एक महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है, इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
2: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
3: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसजी से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी

0: एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुंचना है,
1: तो डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख गया अब ये मुझे पहुंचना है एनएसडी। तो फिर वहां
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे

0: यारे, फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात है।
0: ओए। तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही।
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: बात
0: हमने
1: ही
0: बहुत
1: बड़ी,
0: देखा है फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, तड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है,
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह। ये
0: हाँ
1: गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र आपसे बातें हो रही है और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक एनएसडी में है और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहां पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूं तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहां है, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूं अभी मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूं, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उस समय मेट्रो बन रही थी तो मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसजी के गेट पे पहुंचा और मैं एनएसजी मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नार विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का

0: हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
1: जी।
0: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: वो छोटा वाला,
0: छोटा वाला फोन, तो उसमें एक मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, रिकॉर्ड कर दो, नहीं मेरे पास में इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
1: अरे गजब।
0: और तुम अनुशासित हो,
1: एक मिनट में सब बोल
0: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर जल सकते नागर नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही, भाई अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको, कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत जगह कभी
1: बिल्कुल बिल्कुल विहान ग्रुप,
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहां से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलग दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा,
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि

0: जी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ रहा है, आ ही नहीं रहे। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से बूढ़ा साथ में आया और ने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्हें बोला किसको लेके आ गए, कौन है मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं। हाँ। आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ चलाता है, तो मैं हाथ चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लेबुआने, आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबुआने,
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबुआने, आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, तो उसके दोस्त हैं
1: बिल्कुल,
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: कहते हैं देवेंद्र
0: उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चढ़ाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसा

से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। अरे यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए, काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, एसएनए अवार्डी है वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था, दिखती है आस क्यों पाखे पसारे, सही में है

0: तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखने
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूं। अगले
1: को यहां एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है, एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओंकारा का
1: गाना है,
0: बहुत सुंदर गाना है,
1: बहुत शानदार
0: गाना है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को यह परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है,
0: डेस्टिनेशन
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है, वो तो मुझे जाने थे स्कूल उधर।

0: हुआ नहीं है। जिस समय जब मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था। अच्छा। पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुलाया, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा यार। तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पर मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: ओके।
0: तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया
1: और वहीं वो
0: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर जी?
0: धुरंधर जी उस समय तक थे। धुरंधर जी प्रतिभा मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो। क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है और फिर वो रिटायर हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे और मुझे शौक था एक्टिंग करने का और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है? मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा।
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
0: मैं बताऊं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
1: हाँ।
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ।
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ, हाँ। हाँ,
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था।
1: शक को साफ बोल रहे हो?
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडिया हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा वो सही बोला था।
1: हाँ।
0: शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया, लोअर डेप नाटक में दोबारा हुआ एनएसजी में और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनिल खुटवत सर। और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की। और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे सुनने आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूं, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूं तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूं, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसा करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा?
0: हाँ। तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाल लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे और कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत

0: इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक, कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किए, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बंबई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया, रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पर मैं चल रहा हूं मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूं, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूं, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूं, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूं, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया,
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था, और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहां हर हाल में पहुंचना है, जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता है, आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा
0: वो क्योंकि रेडियो को अंदर था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़े बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल हम सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूं मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी, बदल दी, उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है,
1: क्या कर
0: तो
1: सकता
0: वो
1: है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है,

0: सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट तिगायब, उन होठों में होठ तिगायब, हाथ तिगायब, बात तिगायब, दुनिया की औकात तिगायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, बढ़िया गाना। जी जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है, तो जो भी शो होता है, जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडिया हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है, तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज?
0: जी जी, स्वानंद दादा है, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा,
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविन सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविन सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था गाना, उसमें समूह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या,
1: बिल्कुल
0: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कई तो फूक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन,
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी,
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल,
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जुदैया मैं कहते कहूँ जैसे गाने मैंने सुन लिया, बड़ा हुआ हूं मैं, सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूं तो मैंने हर तरह की, शहर से होके पानी पी के आया हूं तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का

0: मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है।
0: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वामी नारायण दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, वेद भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

श्रोताओं, आपका इंतजार, आपका ख्वाब और ये है आप सबका प्यार आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर।

दोस्तों पेशे खिदमत है कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, जो आपके अपने लाइव सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जब इस तपती गर्मी में शाम आपको खुशगवार लगे तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपका दिन खुशनसीब था, यानी बहुत अच्छा था। अपने आप को जज करके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि आज आपने दिन में कितने अच्छे काम किए, कितनी अच्छी आपकी सोच थी और कितने अच्छे आपने फैसले लिए, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा था। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर हम सबको खड़ा कर देता है जहां सब कुछ हमें रुका रुका सा लगता है, लेकिन उसी रुकावट के भीतर हमें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि वो हमारे भीतर कहीं छिपी होती है। हर नया दिन एक अवसर है ये साबित करने का कि हम अपने हालात से बड़े हैं। असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर की सोच में है। वही सोच हमारे जीवन को सही दिशा देती है। यूं ही नहीं, हम आपके लिए तरसते हैं। आप हो ही इतने प्यारे कि हर सांस के साथ हमारे दिल में धड़कते हो। आपकी मौजूदगी ही हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह है। वजह है आप, क्योंकि आपके संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। और स्वागत है आप सभी का, शुक्रिया आप सबका जो आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और समय निकाल कर उन पर कमेंट्स भी करते हैं और संदेश भी देते हैं, और फिर आप इस जर्रे को आसमान का सितारा भी बना देते हैं। और अब शुरुआत करते हैं उन संदेशों की और उन नामों की जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। ये हमारे पहले श्रोता हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। शेरवानी स्कूल गंज टिंडवारा यूपी से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी। और ये हमारे श्रोता है गांव चौधरीवास हरियाणा से, मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नभाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मोहेरकर। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेराज जहां। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी पाल और विलिस डिकेस्टो। समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक सुनीता, आरजू पप्पू हसमुख लाल, संजीव बंटी और पूरा खुशदिल परिवार। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवानकर,

और सिद्धांत। नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित कुमारी ध्वनि गवाणकर परी, और ये हमारे श्रोता हैं राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक और प्रियांशी गांव चौधरीवास से। और श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए हमारी तरफ से।

श्रोताओं, अभी हमारे किसी श्रोता ने ये संदेश दिया कि वो जहाँ से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वहाँ मौसम बहुत सुहावना है। भाई, हम तो उनकी ये बात सुनकर ही ठंडी हवाओं से घिर गए, हमें ऐसा महसूस हुआ। वो क्या है ना दोस्तों, कि ये तो सोच का असर है। आप इतनी ठंडी जगह पर हैं और आपकी खुशी देखकर हम भी खुश हो गए। हम अक्सर अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। जब हम ये देखना सीख जाते हैं कि हमारे विचार केवल आते जाते बादल हैं, तब हमारा मन हल्का होने लगता है। भीतर एक ऐसी खुशी जन्म लेती है जो ये देख लेती है कि हमारे अंदर क्या ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है कि हम बाहरी परिस्थितियों पर ही केवल निर्भर नहीं हो सकते। और यही भावना हमारे अंदर शांति भर देती है और फिर ये शांति हमें जीना सिखाती है। दिल आपकी याद में उदास है, बस आपसे मिलने की आस है। ना जाने कितने लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमारे लिए तो बस आप ही खास हैं। लीजिए, ये हमारे श्रोता हैं गांव जेवरा हिसार से, वीरेंद्र भयान, शमशेर सुरेंद्र और मनोज भयान। और ये अगला हमें मिला है संदेश ओम रेडियो श्रोता संघ से हैं, महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। और ये हमें भेजा है अगला संदेश यवतमाल से जयराम सिंघणकर, दिशांत और अर्पिता जी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद सानवी और कल्पना देशमुख। और ये मिला है हमें अगला संदेश और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और हमारे अगले श्रोता हैं श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल, यशपाल धीमान, कोमल धीमान, शुभम, प्रियंका, आंचल, कुंज धीमान, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत, राजेश धीमान, और ये हैं मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से। और हमारे अगले श्रोता हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत और सुलोचना भगत। गांव चोहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। गंज डुंडवारा यूपी से हैं मास्टर खिल्लू, परवेश बेगम, इमराना नास, नवाजिश शेख। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश लोखंडे और इनका पूरा परिवार। हमारे अगले श्रोता हैं गांव शेड़ा, तहसील भादरा,

जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा और इनका परिवार। और अब यही प्यारा सा बेहद खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए।

सार की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत, हमारे जो आपके सोशल मीडिया पर आधारित संदेशों का लाइव कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी मेजबान सारिका शर्मा। दोस्तों, जब भी हमारा मन, आपका मन खुश होता है तो उस पर बाहरी परिस्थितियों या तनाव का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमें सब कुछ अच्छा लगता है तब जब हमारा मन भीतर से खुश होता है। आपने खुद भी कभी कभी ये गौर फरमाया होगा कि जिस दिन आपका मन उदास होता है उस दिन ये गर्मी, ये उमस या ये मौसम की परिस्थितियां आपको ज्यादा परेशान करती हैं और बात बात पर आपको गुस्सा भी आता है। इसीलिए दोस्तों, दिल को खुशियों के समंदर की हमेशा तलाश रहती है और ये तलाश तो आपको और हम सबको करनी भी चाहिए। हर मौके पर खुशी को ढूंढ लेना चाहिए। खुशी यूं ही बचकर आपसे कैसे जा सकती है? और हमारी खुशी की वजह तो आप सब हैं। तुम्हारे बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। लोग साथ होते हैं पर दिल अकेला रहता है। हर जगह तुम्हें ही ढूंढता हूँ। काश तुम समझ पाते कि तुम्हारी कमी कितनी खलती है मुझे। ये दूरी सिर्फ एक फासला नहीं है, मेरे दिल का ये एक दर्द बन चुकी है। लेकिन हमारे दर्द की दवा आप सब हैं। हमारे श्रोता हैं मराठवाड़ा से आरती छोटी, बबली, रूपाली, वंदना धूले और सरूबाई धूले। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमधाड़े।

ये हमारे अगले श्रोता है रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान और ये संदेश आया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मंडी आदमपुर बाईपास से हैं रणधीर उर्फ धीरू भाई टोनी भाई और आत्माराम। ये हमारे श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओमप्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुविहा निवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। महाराष्ट्र निवासा खुपटी से हैं बंडू लोहार पोपल घट माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपल घट। और ये भेजा है हमें संदेश गांव चूली देशवाली तहसील आदमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल दड़ौली से रघुबीर मंडेरना मास्टर विनोद जाखड़ मास्टर इंद्रमोहन शर्मा और राम निवास पांडू। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। गांव व डाकघर निमनाबाई जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरुप्रीत सिंह लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। और पेशी खिदमत है ये प्यारा सा नगमा आप सबके लिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सारिका शर्मा के साथ कार्यक्रम है लाइव सोशल मीडिया पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे। श्रोताओं, बस आपके बारे में ही तो हम ये कह सकते हैं कि तुम वो शख्स हो जो मुझे पल भर में खुश और उदास करने की ताकत रखता है। दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है, कभी गम है तो कभी खुशी, कभी धूप तो कभी छांव, कभी सफलता तो कभी असफलता। लेकिन हमें जिंदगी में कई बार सब कुछ मिल जाता है, हम तब भी खुश कहां रहते हैं। और कई बार जो लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं, सब कुछ हासिल कर लेते हैं, उनका भी ये कहना होता है कि असली सफलता पैसों या अवार्ड में नहीं होती, किसी ट्रॉफी से नहीं मिलती, वो उससे आगे है, वो उस पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि पैसा तो एक जुनून है। हाँ, सफलता एक जिद भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो खुशी मिलती है वो खुशी होती है जो उस काम को करने से मिलती है जिसे करने की दिल काफी समय से तमन्ना कर रहा होता है। जैसे कि बच्चे जो अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं और वो मकाम भी पा लेते हैं जिसकी वो तमन्ना बहुत साल से कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद असली खुशी है, असली सफलता है वो समय जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के बाद हम अपनों के साथ बैठकर जो संतुष्टि पाते हैं वही असली संतोष है। क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ हमें जब अपने सपनों की उड़ान भरने के बाद जो सफलता मिलती है, असल में वही जिंदगी का बेहतरीन समय होता है। और दोस्तों, अब लेते हैं ये अगले नाम जो कर रहे हैं हमारा इंतजार। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल, और ये हमारे श्रोता हैं। पाथ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। हमारे अगले श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और हैं सार्थक शर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। और ये हमारे श्रोता हैं

दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप अशोक येले, श्रीवर्णी अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। डेरा पाटन गुजरात से हैं धीरज वी रबारी। और यह हमारे श्रोता है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर। और ये हमें भेजा है संदेश भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग और इनके परिवार के सदस्य। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर एमपी से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बिन शाह और राजेंद्र जी शाह। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाहना हसन, नक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और अदीब हसन। आप सबके लिए पेश है ये बेहद खूबसूरत सा नगमा आकाशवाणी हिसार की ओर से।

दोस्तों, जिंदगी का आईना इतना सच्चा होना चाहिए हमारी कि जो भी देखे उसे अपनी छवि नजर आए। क्योंकि ये बात सच है कि आपके बारे में जो राय दूसरा कायम करता है वही सच्ची राय होती है। हाँ, हम अपने बारे में खुद भी तो जानते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन दूसरा हमारे पीछे से किसी और के सामने जब हमारी प्रशंसा में दो शब्द कहता है तो समझ जाइए कि आपकी जिंदगी पाकीज़ा है। जिंदगी तो वैसे भी बेहद खूबसूरत है, बेशकीमती है दोस्तों, लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए हमारे दिल का पाकीज़ा होना बहुत जरूरी है। हम अच्छे हैं हमें ये बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक पाक दिल आईने की तरह साफ होता है, जैसे कि आपका है। और लीजिए, ये हमारे श्रोता है जो इंतजार कर रहे हैं, परभणी महाराष्ट्र से श्रोता संघ रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश संघई और इनका पूरा परिवार। और ये हमारे श्रोता है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनूर सिंह, गुलाल सिंह और अविराज सिंह। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देवकुमार, आर्य कुमार जायसवाल। और ये हमारे श्रोता है चंदन नगर सहारनपुर से सोनाली, सुरेश नारंग, आशु शेख, अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार और संदीप मक्कड़। सादुल शहर राजस्थान से हमारे श्रोता है राम कुमार रिवाड़ और इनका परिवार। गांव आनगांव जिला जालना से हैं परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, प्रवाद शिंदे और इनका परिवार। गांव बांडा हेड़ी जिला हिसार से मास्टर जगदीश चंद्र जांगड़ा, कृष्ण मोटा, सतबीर हठी, पुकारब टेलर। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका परिवार। और ये हमें भेजा है संदेश गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप अनहद और गुरुशब्द। आप सबकी चाहत ये गीत।

दोस्तों श्रोताओं, जिंदगी में हमारे लफ्ज यानी कि जो हम बोलते हैं वो ही सब कुछ होते हैं। वो इंसान के दिल का आईना होते हैं, वो शब्द जो हमारे लफ्ज होते हैं जो हम बोलते हैं। शक्ल का क्या है दोस्तों, वो तो उम्र और हालात के साथ वैसे भी सबकी बदल जाती है, लेकिन दिल वो कभी नहीं बदलता। क्योंकि दिल अगर खरा सोना है तो जैसा आपका बचपन में था वैसा ही आपका बुढ़ापे में होगा। हाँ, शक्ल तो बदल ही जाती है। आईना फिर से मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना तो मांगता है, क्या हम दे सकते हैं? भला ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में अपनी शक्ल और सूरत पर मुस्कुराहट को जरूर लगाए रखिए, या कह लीजिए कि मुस्कुराहट की जरूरत हम सबको पड़ती है, आपको भी पड़ती होगी। इसीलिए हंस के बोला कीजिए, बुलाया कीजिए, बात किया कीजिए। ये हमारे अगले श्रोता हैं जो बहुत प्यार से हमें संदेश भेज रहे हैं। पांडक वड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुराड़े

उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बल्हारचर से सूरज लौंडे प्राची और एकलव्य लौंडे। और ये हमारे श्रोता हैं बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश और नियति कुमारी। हमारे अगले श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, और झारखंड से हैं निप्पी साहनी और मिसेज सुनीता साहनी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। और ये हैं यादव मोहल्ला सनावद एमपी से दिलीप मालाकर, योगेश सुनीता और मुस्कान मालाकर। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शायना, विशाल, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश और तमन्ना बंसल। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, आप और हम तो आईना है आईना, और आईना ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जिनकी शक्लों में कुछ और दिल में कुछ और हो। जी बिल्कुल, और सच्ची सूरतों में तो रब दिखता ही है। ये हमारे अगले श्रोता है मंसूरी रेडियो क्लब मुंगी साबुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और ये हमें भेजा है संदेश मुरादाबाद गांव दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। और ये हमारे अगले श्रोता हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, ओम मलिक और आकांक्षा मलिक। जिला खरगोन सनावद एमपी से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। और हमारी अगली फरमाइश है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह, रोल नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या।

श्रोताओ, आप सब सुन रहे थे अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। अब से चंद ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया।

0: मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। पहले आज के शेष आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत, और 6:30 पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है ज्योतिष, विज्ञान या अंधविश्वास। श्रोताओं, आज शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, और हमारे गांव का समय रहेगा 7:30।

कार्यक्रम परिक्रमा आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे और खुला आकाश। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की और अब कल के आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर और प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम। सुप्रभात आप सुन सकते हैं 7:40 पर। श्रोताओं, कल है रविवार तो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नारी मंच आप सुनेंगे प्रातः 10 बजे और बाल सभा सुन सकते हैं आप 10:30 पर। और इसी बीच 1:05 पर रिले होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

श्रोताओं, कल हमारी सायंकालीन सभा के तहत 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हिसार का दूसरा भाग। भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं 6:20 पर और घर आंगन का समय रहेगा 6:30।

कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारी पसंद कार्यक्रम और व्हाट्सएप के बहाने फिल्में तराने आप सुन सकते हैं कल रात 8 बजे। ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 10 बजे। तो ये थी जानकारी आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। उनके समय के अनुसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार। आइए श्रोताओं, अब प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ प्रतीक्षा की बस चंद पल और हमारे साथ

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान अंबाला में 120 युवाओं और पलवल में 93 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई देशों के मुकाबले भारत में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने आज रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 950 विद्यार्थियों को डिग्री और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी और कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
1: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की प्रौद्योगिकी तरक्की को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भागीदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले और उनका सामर्थ्य बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: हरियाणा में अंबाला, पलवल सहित विभिन्न जिलों से भी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के आयोजन के समाचार मिले हैं। अंबाला रेल मंडल द्वारा आयोजित मेले में 120 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। अंबाला रेल मंडल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया,
2: इस बार ये जो रोजगार मेला था दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एज ए ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और आज हमने अंबाला में अराउंड 120 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं और इसमें जो अराउंड 60 कैंडिडेट्स इंडियन रेलवेज थे और बाकी 60 कैंडिडेट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पोस्टल, देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MHA एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक तरह से मोटिवेशन का ये बहुत बड़ा अवसर था।
0: एक बैंक में नियुक्ति पाने वाली मीनू ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया,
3: मेरा नाम मीनू है और मैं रोहतक से आई हूँ। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पोस्ट पर। मैं मेरे परिवार में सबसे पहली हूँ जिसको सरकारी नौकरी मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपको भी आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
0: श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने आज 94 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कई अच्छी और नामचीन कंपनी विश्वविद्यालय में रोजगार देने के लिए आ रही हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। मंत्रालय के अनुसार अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार मसौदा नियम तैयार किए गए हैं। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था। ये इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय करनाल दौरे के दौरान आज नीलोखेड़ी हलके के करीब 10 गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीणों ने रेलवे से जुड़ी समस्याएं भी उनके सामने रखी हैं, जिन पर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर न्यायालय की टिप्पणी आई है, लेकिन अंतिम फैसला विधायिका और राज्य सरकारों को करना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। आईएएस अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण देने का विषय उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे अधिकारी पहले से ही सक्षम और उच्च स्तर पर होते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर मनोहर लाल ने कहा कि यह केवल भारत का विषय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर है। उन्होंने कहा कि कई देशों में तेल की कीमतों में 60 से 100% तक वृद्धि हुई है, जबकि भारत में बढ़ोतरी बेहद मामूली है। हरियाणा में लाभार्थियों को आवास योजना की राशि जारी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा प्रदेश को जारी कर चुकी है। राज्य सरकार का हिस्सा मिलते ही लाभार्थियों को राशि जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीक्षांत समारोह के दौरान 950 विद्यार्थियों को एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरा मेडिकल की उपाधि और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष भी मौजूद रहीं। राज्यपाल व कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने उपाधि व स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की शिक्षा व शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से चलाई जा रही अंगदान मुहिम की सराहना की। राज्यपाल ने उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। अब कल 24 मई तक स्कैन कॉपी प्राप्त की जा सकेगी। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम युवा उमंग के तहत सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है ज्योतिष, विज्ञान या अंधविश्वास, और इस विषय पर प्रीति शर्मा से बात कर रहे हैं अनिल कुमार।

0: श्रोताओं, आपने ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। क्या है ज्योतिष विद्या और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे आकाशवाणी हिसार के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती प्रीति शर्मा जी, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य हैं। आइए जानते हैं उनसे ज्योतिष विद्या के बारे में। मैम, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: और हमारा प्रश्न ये रहेगा कि सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र क्या है और आज के समय में इसका क्या महत्व है?
1: देखिए सर, ज्योतिष जो शब्द है इसका अर्थ है प्रकाशवान होना, या कहें तो प्रकाश का विज्ञान और ज्ञान। जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनसे जो रेडिएशंस धरती पर आ रही हैं, उसका किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें ज्योतिष सिखाता है। आपने सर कभी इंद्रधनुष देखा आसमान में?
0: जी मैम।
1: इंद्रधनुष के जो रंग हैं वो होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक वाइट रे होती है और वो पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो उसके सात रंग दिखते हैं।
0: सात रंग दिखते हैं, वो पानी के अंदर से
1: गुजर कर दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, ये सात रंग होते हैं और वो जो पानी की बूंद है वो ज्योतिष है।
0: जी मैम।
1: किसी व्यक्ति के जीवन में किस रंग का क्या प्रभाव कैसे पड़ने वाला है, वो एक ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति ही किसी को बता सकता है।
0: जी।
1: और जब वह किसी को बताता है कि मान लीजिए आपके जीवन में ये सुख आने वाला है, तो आपको इसमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना, या आपके जीवन में ये दुख आने वाला है तो इसको झेलने की जो क्षमता और शक्ति चाहिए वो एक किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर व्यक्ति समझ सकता है। कष्ट तो उसे भोगने पड़ते हैं लेकिन वह समझ सकता है कि इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए।
0: क्या सच में जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं
1: जी
0: हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं?
1: बिल्कुल करते हैं सर।
0: कैसे करते हैं?
1: एक व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर आता है।
0: जी।
1: तो जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए होते हैं उन्हें हम कहते हैं संचित कर्म, जिनका हमें भोग भोगना है। तो किसी व्यक्ति के जन्म का जो समय है वो व्यक्ति ना तो स्वयं निर्धारित कर पाता है, ना उसके माता पिता निर्धारित कर पाते हैं, वो ईश्वर निर्धारित करता है। और वो उसी समय जन्म लेता है जब उन ग्रहों के नक्षत्रों की जो रेडिएशंस या लाइट्स या इंक्लिनेशन है उस एक पर्टिकुलर डिग्री पर आती है, जिस समय पर उसको वो कर्म भोगने होते हैं। एक ऑप्शन ईश्वर ने हमें और भी दिया है जिसे हम कहते हैं आगामी कर्म या प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जिसे हम अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमें करना है या ये नहीं करना है। तो जो घटना को घटित तो होना है वो तो होगी, लेकिन उस घटना की प्रतिक्रिया पर हमें क्या करना है ये हम निर्धारित कर।
0: बात करते हैं कुंडली की।
1: जी।
0: कुंडली देखकर किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में कैसे जाना जा सकता है?
1: देखिए, कुंडली में क्या होता है, 12 घर होते हैं।
0: जी।
1: पहला भाव जो होता है किसी की भी कुंडली में वो लग्न होता है। लग्न का अर्थ है कि किसी व्यक्ति विशेष का जो स्वभाव है वो कैसा होगा। 12 भाव 12 राशियां होती है। 12 राशियों में भी जो एक राशि की हम बात करते हैं, जैसे मेष राशि की, पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि में भी 2.5 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो मेष राशि के कुछ गुण, अश्विनी नक्षत्र के कुछ गुण उस व्यक्ति विशेष में होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेष राशि का जैसे स्वामी जो है वो सूर्य है, तो इस व्यक्ति में एग्रेशन होगा, एकदम सूर्य की तरह चमकने वाला व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का क्या स्वभाव होता है। इसी व्यक्ति का यदि 5वां घर देखें, 5वां भाव जो होता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों का होता है। अब वो 5वां घर जो है वो किसी व्यक्ति के, मान लेते हैं जुपिटर है, जुपिटर देव गुरु होता है। अगर वो देव गुरु का घर है तो ऐसा समझ में आता है कि पिछले जन्मों से अपना अच्छे कर्म लेकर आया है और इस जन्म में वो अच्छे फल भोगने वाला है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल।
0: तो मैम, कुछ जो लोग हैं वो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते भी नहीं।
1: देखिए,
0: लेकिन कुछ रखते भी हैं।
1: जी।
0: तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में?
1: दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है सर। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि धरती, जैसे हमारे पुराने टाइम में होता था, जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि धरती घूम रही है तब तक लोग मानते थे कि धरती स्टैटिक है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये जान लिया था कि धरती स्टैटिक नहीं है, धरती गोल है। आप

0: के मानने या ना मानने से शास्त्र की अपनी एग्जिस्टेंस तो रहेगी, आप माने या ना माने। लेकिन हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ही अपने एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ और जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, कुछ भी प्रारब्ध नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, डेस्टाइन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं अपनी इच्छा से ऐसे कोई काम कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी धड़कन अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारा बीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ तक तो छोड़िए कई बार टेबल पर खाना रखा होता है हम खा नहीं पाते हैं। जब आपका खाना भी निर्धारित कोई और कर रहा है जबकि प्लेट में रखा हुआ है, तो फिर हम ये कैसे माने कि कोई शक्ति या कोई पावर है जो हमें नहीं चला रही,
1: जो हमें रोक रही है
0: कुछ करने से,
1: काम करने से।
0: बड़े बड़े साइंटिस्ट विदेशों में भी जो ये कहते हैं कि कोई पावर, कोई शक्ति या कोई ईश्वर है ही नहीं, वो भी ये मानते हैं कि देयर इज सम यूनिवर्सल पावर हु इज रेगुलेटिंग अस। तो वही शक्ति है जिसने इस शास्त्र को बनाया है। सबसे पहले ये जो शास्त्र है, ज्ञान है, ये ब्रह्मा जी के पास आया था
1: जी।
0: भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि अब आप इस ज्ञान को और लोगों में बांटिए, तो उन्होंने नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने इसे और विस्तार से बांटा शौनक ऋषियों में। ऋषियों से वो आ गया पराशर ऋषि के पास, पराशर ऋषि से आया मैत्रेय ऋषि के पास, और फिर आगे और ऋषियों के पास आया। तो ये हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, जिसका एग्जिस्टेंस मुझे लगता है कि अब हमें पहचान लेना चाहिए।
1: जो ये नक्षत्र और जैसे ग्रह होते हैं जैसे राहु केतु और शनि
0: जी,
1: ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, प्रभावशाली क्यों माना गया इनको?
0: जी, राहु केतु की बात करते हैं सर। पहले राहु केतु जो है वो एक्चुअली में ग्रह है ही नहीं, वैसे तो उसे छाया ग्रह कहते हैं
1: जी।
0: राहु केतु की जो उत्पत्ति हुई वो समुद्र मंथन से हुई थी। स्वर भानु आपने सुना होगा, राक्षसी कथा सुनी होगी कि वो अमृत पीने वाले थे और उसी समय भगवान ने उनको मार दिया, क्योंकि जो अमृत था उनके बॉडी के अंदर नहीं गया लेकिन लिप्स तक पहुंच गया था, तो वो अमर होने वाला था राक्षस, लेकिन भगवान ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर था वो बना राहु और जो नीचे की बॉडी पार्ट बन गई वो हो गया केतु। अब जो सर है वो ऐसी चीजों की तरफ भागता है, मतलब जो राहु है वो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागता है, वो ऐसी कुछ भी डिमांड कर लेता है जो पॉसिबली मिल पाए या ना मिल पाए। अब किसी के जीवन में अगर राहु बहुत प्रोमिनेंटली उसके स्वभाव को इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके लगन से किसी तरह कनेक्टेड है, तो वो व्यक्ति अचानक ही ऐसी चीजों की तरफ भागेगा जो पॉसिबली मिलने वाली हो या ना मिलने वाली हो। जैसे किसी ने बोला कि इस सट्टे में इतना पैसा लगा दो और आप एकदम से अमीर हो जाओगे, तो वो उस तरफ जा सकता है। इन द सेम वे केतु जो है वो बॉडी पार्ट है, उसके पास बुद्धि नहीं है, सर तो है ही नहीं, तो वो ऐसे काम कर देता है जिसमें बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। केतु की एक और क्वालिटी है कि वो उस आदमी को डिटैच कर देता है, किसी से जोड़ता नहीं, अटैच नहीं करता। और जिसके केतु ज्यादा इम्पैक्ट डालता है उसके लगन पर या उसकी शिक्षा भाव पर, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता चला जाता है। इन द सेम वे ऐसे ही शनि की बात करते हैं। शनि अगर आप देखें यूनिवर्स में सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, बहुत धीरे चलता है। शनि को जजमेंटल माना जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे शनि को झूठ बर्दाश्त नहीं होता था, वो तुरंत निर्णय करते थे। ऐसे ही जिस व्यक्ति को शनि प्रभावित करता है वो व्यक्ति ना झूठ बर्दाश्त करता है, वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, कर्मठ होता है और सोच समझ कर काम करने वाला होता है।
1: जैसे मैम आप एक ज्योतिष आचार्य हैं
0: जी,
1: और ये कुछ और भी ज्योतिष आचार्य होते हैं जो कुछ उपाय बताते हैं
0: जी,
1: ज्योतिषीय उपाय जिन्हें कहेंगे, तो क्या ये सचमुच उपाय कुछ फायदा देते हैं?
0: देखिए सर,
1: या करने चाहिए या ना करने चाहिए, क्या इसका प्रोसेस रहता है?
0: ये सर व्यक्ति विशेष की अपनी श्रद्धा पे निर्भर करेगा। मैं उदाहरणतः बता देती हूँ आपको। जैसे कि हम कहते हैं यदि आपका बुध ठीक नहीं है तो आपको गाय को चारा डालना चाहिए। कि बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक है, बुद्धि भाषा का कारक है, बुध जो है भाषा का कारक है, वाणी का कारक है, वाक पटुता देता है। बुध को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है कि भाषा ठीक हो। अब भाषा कैसे ठीक होएगी? जब मन शांत होएगा। अदरवाइज अगर आप एग्रेशन में रहेंगे तो अच्छा बोल कैसे पाएंगे? अब मैं इंटरलिंक कर रही हूँ चीजों के, कि बुध ठीक अगर गाय को चारा डालेंगे तो ठीक कैसे होगा। गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं, गाय की सेवा करना अपने आप में ही पुण्य का काम है हमारी परंपरा के हिसाब से। तो

0: अगर आप गाय को भोजन करा रहे हैं तो आपकी बुद्धि, आपका मन शांत होता जाएगा, जो ऑटोमेटिकली प्लैनेट से कहे तो कनेक्ट करके कि बुध ठीक होगा।
1: ऐसे जैसे कुछ और भी उपाय बताते हैं, तो आपने बुध के बारे में बताया
0: जी,
1: किसी और ग्रह या नक्षत्र के बारे में भी उपाय बताते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं।
0: देखिए सर, कुछ लोग जो है वो मार्केट में सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है
1: जी,
0: और कुछ लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं। तो जिन उपायों का साइंटिफिक कनेक्शन है बॉडी के साथ या हमारे कर्मों के साथ, वो सच में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे हम कहते हैं कि तांबे का कॉइन जो है वो हमें नदी में या नहर में डालना चाहिए, ये एक उपाय है। अब तांबे का कॉइन नदी में डालने से क्या ही कनेक्शन किसी प्लैनेट का या कर्म का? तो आप ये देखिए, जो तांबा है अगर वो पानी में जाएगा तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। जो एक्वाटिक एनिमल या जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव है उनके लिए फायदेमंद है। तो जब आप किसी दूसरे प्राणी की सेवा करेंगे तो आपका अपना जीवन ठीक हो जाएगा
1: जी।
0: ये दैट इज वन मोर कनेक्शन।
1: टैरो कार्ड एक इसमें नाम लिया जाता है, तो टैरो कार्ड क्या है?
0: टैरो कार्ड भी सर ज्योतिष शास्त्र की ही एक ब्रांच है। टैरो कार्ड नया वर्जन, नया नाम है।
1: जैसे वास्तु शास्त्र टैरो कार्ड
0: जी जी,
1: कुछ और भी होंगे।
0: जैसे ज्योतिष शास्त्र वेदांग है, ज्योतिष शास्त्र की ही अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र है जो बॉडी लैंग्वेज या बॉडी की बनावट के हिसाब से बताता है व्यक्ति कैसा होगा। ऐसे ही है प्रश्न शास्त्र, कि किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न जिस समय जन्म लेता है उसी समय की कुंडली का हम निर्माण करते हैं और उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसी प्रश्न शास्त्र का नाम ही टैरो कार्ड है। इन द सेम वे अभी जो लेटेस्ट चर्चा में न्यूमरोलॉजी भी है, कि नंबर का क्या विशेष रोल है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु शास्त्र भी ज्योतिष का ही सेगमेंट है। हमारे पुराने शास्त्रों में ऐसा दिया गया है कि जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, आपकी जिज्ञासा में कुछ आता है, तो हम आपसे कहते हैं एक नंबर चुनिए। वो जो नंबर आप चुनते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर आता है। वो ये नंबर किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और उस कैलकुलेशन के दौरान पता चलता है कि आपका समस्या का समाधान क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपने एक नंबर ही चुना, एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर आप कहें कि मैंने तीन नंबर चुना, तो वो बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सो ऑन, आगे गणनाएं हैं।
1: तो मैम, जो वास्तु शास्त्र है इसका ट्रेंड काफी है आजकल। जैसे हम कोई नया मकान बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के बारे में पता करते हैं, कैसे बनाना चाहिए,
0: हाँ,
1: कैसे नहीं बनाना चाहिए, क्या चीज कहाँ होनी चाहिए।
0: हाँ जी,
1: तो इसके विषय में थोड़े हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: देखिए सर, वास्तु शास्त्र भी हमारे शास्त्रों से ही निकला हुआ है। राजमहल जब बनते थे
1: जी,
0: तब से ही वास्तु शास्त्र आया हुआ है।
1: यानी कि बहुत पुराने समय से ही ये,
0: बहुत पुराना है सर ये
1: जो।
0: हाँ जी, जब ये मुगलों ने बनाए, किले बनाए, जब राजा दशरथ ने महल बनाए, बहुत पुराना है सर ये शास्त्र। हमें आज पता चल रहा है, हमारे फैशन में आ जा रहा है, उसका रीजन ये है।
1: लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा है।
0: वो बहुत ज्यादा का कारण ये है कि सर घर छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं
1: जी,
0: और कहीं से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलता। पहले घर खुले होते थे, वेंटिलेशन होती थी, सूर्य का आना जाना होता था घर में, हवा का आना जाना होता था, पंच तत्वों से मिलकर बनता था घर। अब पंच तत्व मिलते नहीं है, तो उन पंच तत्वों को कैसे मिलाया जाए, इसलिए वास्तुशास्त्र को आजकल ट्रेंड में लाना पड़ा।
1: तो मैम, क्या ये वास्तुशास्त्र प्रभाव डालता है?
0: बिल्कुल डालता है सर, बिल्कुल डालता है।
1: कैसे, बताएं थोड़ा।
0: आप साइंटिफिकली समझें, वास्तु कहता है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए।
1: वाय
0: नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उस कॉर्नर से, उस दिशा से सूर्य आ रहा है। सूर्य का उगना अपने आप में रोशनी देना और प्रकाश देना और ऊर्जा देने का काम है। अगर आपका चेहरा उस ऊर्जा की तरफ होगा, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर का मतलब है कि मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यानी जब आप ऊर्जा की तरफ बैठकर, उस तरफ चेहरा कर बैठते हैं, तो आप ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कहीं भी मंदिर में या पूजा पाठ करने का मकसद ही होता है कि मेरी अपनी आत्मा को जागृत किया जाए। ऐसे ही घर में हम कहते हैं कि घर का जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो क्या ब्रह्म स्थान को आप क्लटर्ड रखेंगे, गंदा रखेंगे या मैला रखेंगे? इसलिए उस ब्रह्म स्थान को या तो खाली होना चाहिए, या वहां पर ईश्वर का वास होना चाहिए, या आंगन होना चाहिए कि ऊपर से रोशनी या ऊर्जा आए, ताकि घर में प्रकाश फैला रहे। साइंटिफिकली कहें तो घर में, पूरे घर में रोशनी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तो पॉजिटिविटी या घर में सुख शांति बनी रहेगी
1: जी।
0: दूसरे तरीके से समझेंगे तो लोग कहते हैं कि बरकत होगी, घर अच्छा रहेगा, आपके संबंध अच्छे रहेंगे।
1: या जैसे घर में बीमारी का आना जाना
0: नहीं होगा,
1: नहीं होगा।
0: हाँ जी, अब जैसे क्लोज कंपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं तो जर्म्स आते तो है लेकिन निकलने का ऑप्शन नहीं मिलता,
1: ऑप्शन नहीं मिलता,
0: इसलिए
1: इसी वजह से बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं।
0: हाँ जी, इसी वजह से कलह कलेश भी बढ़ते हैं।
1: बात करते हैं स्टूडेंट्स की
0: जी,
1: स्टूडेंट्स के करियर में, एजुकेशन में, उनकी जॉब में ये जो ज्योतिष विद्या है ये किस प्रकार इफेक्ट करती है?
0: देखिए सर, जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उसे सब्जेक्ट्स को चुनने में बड़ी दिक्कत आती है,
1: काफी कंफ्यूज हो जाता है किस स्ट्रीम में जाए,
0: क्या करिए,
1: क्या करिए ना करिए।
0: तो ऐसी स्टेज पर एस्ट्रोलॉजर काउंसलर की तरह काम करता है। यदि उसकी एजुकेशन और कार्यभाव को कोई एक स्पेसिफिक प्लैनेट बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, कुछ बच्चे होते हैं जिसे मैथ्स भी पसंद होता है, साइंस भी पसंद होता है, हिस्ट्री भी पसंद होता है,
1: लेकिन कंफ्यूजन है कि क्या सिलेक्ट करें,
0: हाँ जी क्या लेना चाहिए, तो ऐसे में हम बच्चे को देखते हैं कि बेटा आपके पांचवें भाव को कौन देख रहा है, आपके एजुकेशन के भाव को कौन देख रहा है, आपके लगन के भाव को कौन देख रहा है। अगर वहां मुझे पता चलता है कि आपको तो भाई जुपिटर बहुत स्ट्रांग तरीके से देख रहा है तो ऐसे बच्चे को अकाउंट्स मैथमेटिक्स में जाना चाहिए क्योंकि गुरु देख रहा है। अगर यही बात करते हैं कि राहु देख रहा होता या राहु की आ जाती बात तो इस बच्चे को टेक्निकल काम करना चाहिए क्योंकि उसे साइंस भी पसंद है तो उसे इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड या कंप्यूटर साइंसेज में जाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे के करियर को सेलेक्ट करने में हम मदद करते हैं। ऐसे ही जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो एक और कन्फ्यूजन आता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, मैं प्राइवेट जॉब करूँ या मैं बिजनेस करूँ। इन द सेम वे ये देखकर पता चलता है चार्ट में कि इसके लिए करियर में बिजनेस ज्यादा अच्छा है या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब अच्छी है।
1: लेकिन आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है
0: जी,
1: फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है
0: जी,
1: कुछ ज्योतिषीय बातें वायरल हो जाती हैं।
0: हाँ जी,
1: उनमें कितनी सच्चाई होती है?
0: देखिए अब ये तो हम किसी पर भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि कुछ लोग सच में काम करना चाह रहे हैं और कुछ सिर्फ अपनी प्रसिद्धि, अपने चेहरे को दिखाने के लिए कुछ भी पोस्ट करना,
1: जैसे कहेंगे कि एक माला डालो और
0: जी
1: ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
0: नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता सर, ये माला डालो वो डालो, हाथ में कुछ पहन लो, कोई ब्रेसलेट पहन लो, कोई स्टोन्स पहन लो, ऐसे कुछ नहीं होता। जब तक आप किसी चीज की साइंस को नहीं समझेंगे ना, उसके पीछे का कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका आउटपुट या रिजल्ट नहीं आता। हमारे शास्त्र कहते हैं जप तप कर्म करने से ही फल मिलता है। जप तप का अर्थ क्या है कि आप किसी चीज को जपो, जितने भी हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं उन सभी के उच्चारण से, उन सभी की ध्वनि से कष्टों का नाश होता है। अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि जो भी ये संस्कृत के शब्द बने हैं इनका हमारे टंग के मूवमेंट से इनसे रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ओम का उच्चारण देती हूँ, अ उ म के मिलने से ओम बना है और ये जो अ उ म है दीज आर पेन रिलीविंग वर्ड्स या वर्ण कहें तो जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके कष्टों का नाश होता है, आपके पेन का नाश होता है। तो कोई मंत्र का जाप करें, कोई तपस्या करें, कोई दान करें तो अच्छे कर्मों की हम उम्मीद कर सकते हैं।
1: तो मैम इसका भविष्य क्या है ज्योतिष विद्या का?
0: अगर किया जाए तो बहुत ब्राइट है सर, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसे हिंदुस्तान ने छोड़ दिया और विदेशों ने पकड़ लिया है। हिंदुस्तान के अलावा सभी देश समझ रहे हैं,
1: जैसे हमारी जो भारत की संस्कृति थी
0: जी,
1: पुरानी संस्कृति, उसमें इसका महत्व था
0: जी। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा न्यूज में, शायद पता हो आपको, 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला एक यूरोपियन टीचर को और उन्होंने क्या किया, ही वॉज अ प्रिंसिपल इन स्कूल, उन्होंने अपनी जॉब छोड़े, हिंदुस्तान आए और उन्होंने हमारी संस्कृत को पढ़ना स्टार्ट किया, वापस अपने देश में गए हैं और वहां उन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। कारण क्योंकि उनको हमारी संस्कृति की महत्ता का पता चल गया जिसे हमें नहीं पता, जो हम नहीं पहचान पा रहे। तो अगर हिंदुस्तानी हमारे देश के लोग ये पहचानने लगे तो हमसे ज्यादा स्ट्रांग देश कोई है ही नहीं।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश सर ये है कि आप संस्कृति माने ना माने, समझे ना समझे, अपने आप का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें और इस धरती पर जीते जागते जो ईश्वर ने अपना ही रूप माता पिता भेज दिए हैं उनका सम्मान करें। ईश्वर की कृपा से सब सुख ही सुख, मंगल ही मंगल होगा।
1: जी मैम, तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को ज्योतिष विद्या के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका आकाशवाणी हिसार स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत आभार सर, आपने बुलाया, थैंक यू।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी

संदेशों से पहले हमारे श्रोता सुन रहे थे भेंटवार्ता, और भेंटवार्ता में विषय था ज्योति, ज्योतिष, विज्ञान या अंधविश्वास, और इस विषय पर प्रीति शर्मा से बात कर रहे थे अनिल कुमार। ये प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से किया गया है।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोता, अब समय हो चला है कार्यक्रम किसान वाणी का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: सुनीता बन राम राम। स्वीता बन आपने भी राम राम और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भैया ने
2: राम राम राम
1: और कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: सरकार
1: और सुनीता बन कई दिन में फेटी है
2: और भी देखो कई दिन हम फेटे भी हैं और मौसम भी जो है आजकल जमा गर्मी मचा रखी बेबे।
1: हाँ क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है जेठ का महीना
2: कोई गर्मी नहीं होगी तो कद होगी फिर।
1: हाँ, पूरा मतलब गर्मी का जोर चल रहा है जेठ का महीना पूरा का प्यार रहा है।
2: हाँ,
1: और कई बार दो जेठ है।
2: हाँ,
1: तो गर्मी यानी और ज्यादा बढ़ के पड़ेगी तो इस चीज के लिए तो अपने तैयारी रखनी पड़ेगी कि अपने गर्मी तक कैसे अपना बचाव करा।
2: हाँ,
1: जब जब भी बदलाव हुआ है मौसम में और कई बार बीच बीच में जैसे छींटा छांटी आंधी गड़ा गजा थोड़ा बहुत रहा तो बीच बीच में थोड़ी ठंड फिर गर्मी लेकिन कई दिन तक आज सुबह भी मौसम में बदलाव
2: देखा और जो अपने लागे है घनी गर्मी होगी गर्मी में भी बीच बीच में आप वाली बात से कि छींटा छांटी सी होती रही है।
1: हाँ, क्योंकि जब तक फसल पकन लग गई थी ना तब तक ही मतलब आंधी तूफान ओले कहीं थोड़ी बारिश कहीं गई अड़ी बारिश और मसा ही फसल ना घर लेके बड़े हैं क्योंकि देखो छह महीना की जब फसल पक्के तैयार हुआ है ना सुनीता बन और जब तक घर ना आ जाए तो किसान भाइयों की धड़कन बढ़ जाए है और जब तक अपना मंडीकरण ना हो अपना आय व्यय

0: का हिसाब ना ले तब तक हमने चैन नहीं पड़ता। जब तक किसान ना भैया देखो नहीं मैं चिंता रहे अपन तो, क्योंकि अपनी तो सारी साल की कमाई तो गेहूं का तो खास तौर पर भी दाने,
1: हाँ, क्योंकि सारे साल चाहिए। तो खाने डांगर पशुआ ने भी चाहिए और देखो घर में भी इतना खर्चा हो जाए हर साल सारी साल का खाना लगा ले वो एक किस्म का उसका भंडारण करना सही तरीके से करना सारी साल संभाल के रखनी बहुत मुश्किल काम है।
0: बिल्कुल बेबे,
1: क्योंकि इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी में फिर जैसे जो भी भंडारण कर रखे उसमें जीव जंतु होने का मतलब खतरा सा हो जाए है, कीड़े कीट काट कहीं लग ना जाए अपने भंडारण की वो है जो खराब ना हो जाए कहीं ना जपना
0: ना। सही बात है बेबे। और सुविता बेबे आज फिर आप किन्हीं नए टॉपिक लेके आए हाँ फिर,
1: हाँ क्योंकि बाहर बताया था आप बात करते रहो हाँ भी के नए नए बदलाव आप करें के खेती में के तकनीक अपना है ताकि अपना उत्पादन भी बढ़ जाए मुनाफा भी बढ़ जाए, क्योंकि देखो साधारण खेती में ईब गुजारा नहीं हो सकता। सुनीता बाण
0: समय की मांग है वे आधुनिकरण,
1: हाँ,
0: और नई नई चीजें नई तकनीक खेती में शामिल करांगे,
1: हाँ, क्योंकि जो भाई बागवानी कर रहे हैं जो सब्जी की खेती कर रहे हैं जो डेयरी फार्म कर रहे हैं जो मछली पालन कर रहे हैं यानी कोई ना कोई सहायक धंधा साथ में कर रहे हैं वो, हाँ, और भाइया तो बहुत से आगे चले गए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि समय के साथ चल रहे हैं वो और आजकल जरूरत है समय के साथ चलन की।
0: और सुविधा भी इसके साथ साथ खर्चा भी रोज का है,
1: हाँ खर्चा तो महंगाई बढ़ी है अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हर टेक्नोलॉजी ना चलान खातर आपने पैसा की जरूरत पड़ा है,
0: मतलब बिना पीछे तो सांझे को नहीं होती सुविधा भी,
1: हाँ क्योंकि देखो हर घर में चार चार पांच पांच मोबाइल है मतलब उनका सबका रिचार्ज है, चाहे खान पान की बात ही करना इतनी महंगाई हो रही है तो पैसे है ना चाहे गोज भर ले जाए सामान चाहे उसका मुट्ठी में आ जाएगा, पहले मुट्ठी में पैसे आया करते सामान कट्टा भर के ले आया करते, लेकिन ये भी ऐसा हो रहा है कि जेब भर ही हो पैसे नहीं चाहे मुट्ठी में लेके सामान आ रहा है, इतनी महंगाई हो रही है,
0: महंगाई हो रही है
1: और इतनी महंगाई में गुजारा करना तो फिर आपना भी नई नई तकनीक अपना के नए नए तरीके अपना के अपना उत्पादन और मुनाफा बढ़ाना पड़ेगा।
0: और सुविता बेबे आज आप फिर बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स विधि है एक नई, इससे अपनी जो फसल है उनका उत्पादन कुकर बढ़ास का, हाँ इसका के तरीका रहोगा,
1: हाँ बेबे क्योंकि देखो एक ये नई विधि।
0: और सुविता बेबे आपने जो करीब बताया था कि साल भर में अपने दाने इकट्ठे हुए हैं फिर अपने किसान भाई ने बांट देखे हैं कि भाई ई मारा ये पूरी साल का गुजारा होना है, जब तक अपना घरा नहीं आ जावा है जब तक अपन नहीं मान सकते बेबे कि अपने कितनी फसल हुई है इस बार,
1: हाँ क्योंकि देखो अपन अनाज तो इकट्ठा कर लिया सारी साल का खाने का पशुओं का खाने का, लेकिन हमने अनाज के साथ घर में सब्जियां भी चाहिए और सब्जी इतनी महंगी हो रही है कि 50-60 रुपए से किलो कम कोई सब्जी नहीं,
0: कोई नहीं है बेबे
1: और ना ही मतलब लगे तो हमने वह मौसमी है लेकिन वे अप्राकृतिक सी लगे है ना वो स्वाद है और ना ही मतलब यूं पता है भाई ये किस आजकल एक बराती सी भी चल रही है चाहे जूठ एक्सच है जो खरबूजे तरबूज हम खा रहे हैं तो मतलब हर जगह यूं सुनने न मिला है अभी इनमें इंजेक्शन लगाया जावे है उस तक पकाए जावे है मतलब सड़े हुए निकलन लग रहे हैं या इस तरह की नई नई बरातियां कहीं ना कहीं हमने देखने मिल जा है, कुछ तो गर्मी इतनी है गर्मी में भंडारण हुआ है फिर वहाँ खराब होने का भी बाहर निकाला जब खराब होने का खतरा हो जाए भंडारण में तो सही रहना है, लेकिन बाहर एकदम आऊंगी इस तापमान में आऊंगी तो सब्जियां का खराब होना ऑटोमेटिक स्वाभाविक है और फिर हमने यही लगा है बीस में मिलावट है या किस पानी तक तैयार हुई है किस खाद तक तैयार हुई है क्योंकि हमारा मन भी शंका में पड़ जाए।
0: और आप देखा भी
1: जिक्र कर रहे हो हाइड्रोपोनिक्स विधि का,
0: हाँ
1: तो इसमें लगभग छोटी छोटी सब्जियां हम इस विधि तक उगा सका, हाँ और इसमें बिना मिट्टी की खेती है,
0: हाँ
1: मिट्टी रही तो
0: एक बात को थे ना कि बोले अपना घर में चार चार पांच पांच फोन है,
1: हाँ
0: उसका यही फायदा ठास का सुविता बेबे की नई नई तकनीक आप तो देख के जानकारी ले रही है
1: क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, अगर आप थोड़े से टाइम फोन रील देखने के बजाय आप थोड़ा सा टाइम कुछ सीखने के लिए लगाओ ना अपने लिए टाइम निकालो घंटा आधा घंटा का कुछ नई नई तकनीकें सीखो उसे नई नई चीजें सीखो क्यों टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ।
0: बिल्कुल बेबे, तो यह आज के नई तकनीक ले रही है सविता बेबे तुम हाइड्रोपोनिक्स
1: विधि त फसलों का उत्पादन और तरीका बेबे या बिना मिट्टी की खेती है इसलिए आप अपने छत पर भी कर सका, हाँ बालकनी में भी कर सका, हाँ थोड़ी बहुत जगह जहाँ उपलब्ध हो वहाँ अपने इसमें अड़क की सब्जियां आप उगा सका, हाँ अड़का एक आधे फल भी जैसे स्ट्रॉबेरी है धनिया है पालक है मिर्च है शिमला मिर्च है इस तरह की सब्जियां आप अपनी छत पर या बालकनी में या थोड़ी बहुत जगह कहीं भी पड़ी हो वहाँ आप उगा सका, हाँ
0: फिर सुविता बेबे अपने दिमाग में एक बैम नहीं रख रहे हैं कि बोले छत पर माटी का और बोझ कर दो तमें
1: हाँ, तो इसमें बोझ नहीं होता बिल्कुल,
0: तो मतलब मिट्टी डालनी है,
1: तीन तरह की तकनीक हुए हैं और इसमें बोझ नहीं होता क्योंकि मिट्टी

0: है नहीं, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट या नारियल का भूसा डाल के और एक पानी की सहायता इसमें ले जा रहा है, उसमें बोझ नहीं होता और पौधे की जड़े उस पानी में बढ़े जावे हैं,
1: पानी में डूबी रहनी चाहिए।
0: हाँ, डूबी रहनी चाहिए, तो उसे हाइड्रोपोनिक्स भी दिया था कमा। हाँ, एक तो यह बहुत ही कम पानी का खर्चा है इसमें,
1: सबसे बड़ा फायदा।
0: हाँ, और
1: बिना पानी के बचत हो जाए।
0: हाँ, और क्योंकि इसमें वाष्पीकरण नहीं होता, लगभग खत्म हो जाए है, और वाष्पीकरण हुआ है तो पानी की बार बार जरूरत पड़े तो इसमें वाष्पीकरण नहीं होता। इसमें बहुत कम जगह में कहीं भी जगह मिल जाए आपने, तो आप एक बार उदाहरण के तौर पर कहीं भी करके देख सकते,
1: देख
0: प्रशिक्षण जरूर ले लें पहले। हाँ, जो किसी भाई ने भी अपना छत पर अपना सेटअप लगा लूं, या अपने बालकनी में लगा लूं, या अपने आसपास खाली जगह उसमें लगा लूं, तो सबसे पहले इसको देखो, प्रशिक्षण लो और फिर अपने छोटे से तरफ आप शुरू कर सके।
1: और श्वेता बीबी, कई बार अपन देखी है कि बड़े बड़े शहरों में जावा तो मतलब लाइन सी लगी पाओगी उनके पास,
0: और इतने बढ़िया बढ़िया मतलब गोभी है, चाहे मतलब खीरे हैं,
1: लटकते
0: लटकते सुतरे हुए पावे हैं, और मतलब आप हैरान रह जाओ क्योंकि ये पारंपरिक खेती का मुकाबला में 90-95% कम पानी का इस्तेमाल हुआ इस खेती में।
1: अच्छा,
0: और इसकी पैदावार दुगुनी हुआ है।
1: और ये तो तैयार भी नहीं बतावा है कि वे 30-50% जल्दी तैयार हो जाओ दूसरी सब्जियां का मुकाबला में।
0: हाँ,
1: और सबसे बड़ी बात इसमें एक यह बताई है सविता विवेक की मिट्टी नहीं है, नहीं है ना इसमें, तो इसमें खरपतवार भी कोनी होगी और कीड़े मकोड़े भी कम होंगे और रासायनिक कीटनाशक जो है उनकी जरूरत भी सबसे कम पड़ेगी।
0: हाँ, और इसमें न्यूट्रिएंट भी होंगे, न्यूट्रिशन भी बड़ी युक्त होगी। या तो बिना मिट्टी के पानी में खेती की सफलता के लिए तो पानी का पीएच मान आपने 5.5 से 6.5 बनाए रखना है, ताकि पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन रहे और पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल करके नियमित सफाई और सही तापमान नियंत्रण रखे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां हैं।
1: मतलब पानी का जो पीएच है उसका जरूर ध्यान रखें, पानी का टेम्परेचर का ध्यान रखें, तो इस चीज का इसमें ज्यादा फायदा रहेगा।
0: हाँ, थोड़ा सा प्रशिक्षण एक बार आपने लेने की जरूरत पड़ेगी, तो अपना कृषि विभाग तक संपर्क करके प्रशिक्षण ले ले, या किसी किसान भाई ने कर रखी है तो उसकी देख ले, उसका सलाह ले ले भी हमने शुरुआत किस तरह करनी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर अपने किचन गार्डनिंग कर रहे हैं कई बार बहुत फायदा उठावे है, एक तो ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाए
1: और घर में हो जाए
0: रोज ही उन्हें बाजना भी आज के है, कदे घिया पागी, कदे तोरी पागी, कदे भिंडी पागी, टमाटर हो गए,
1: रोज घिया खा के थक गए,
0: हम ले जाओ तो उसमें घर की सब्जी की तो ओढ़ी नहीं सुनीता।
1: बिल्कुल बेबे, और तसल्ली रहो अपने, साफ सुथरी है, ताजा है और उसका स्वाद भी न्यारा सविता बेबे,
0: और सेहत भी ठीक रहे
1: भी। बिल्कुल,
0: की खान पान का ही आजकल हम जो बहुत सी बीमारियों ने जन्म दे दिया है,
1: बिल्कुल
0: से बड़ी बीमारी का मोटापा लगा लो, आजकल शुगर बहुत होने लगी है, डायबिटीज जिसने बोल रहे हैं, बीपी बहुत होने लग गया है, ये हमारी जो खान पान की जो शैली है वो बिगड़ती जान लग रही है, क्योंकि हम एक ही तरह के जैसे खाना खाते रहे न्यूट्रिशन हमने लिया नहीं, खाने में बदलाव हमने किया नहीं, शारीरिक जो
1: काम फिजिकली अपना जो काम था वो कम हो गया।
0: हाँ,
1: और डॉक्टर की भी एक ही सलाह है आजकल तो, हरी सब्जी खाओ, पत्तेदार सब्जियां खाओ आप ज्यादा से ज्यादा,
0: और देखो काम पहले से कम होया है क्योंकि टेक्नोलॉजियां बढ़ गई हैं, काम टेक्नोलॉजी तो कर लिया हाँ पा, लेकिन शारीरिक मेहनत करने भी जरूरी है, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और बिजी रखा में तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो क्यों ना अपने आप को ऐसी थोड़ी सी जगह ढूंढ लें जहाँ पर ये अपनी हाइड्रोपोनिक्स अपन सब्जियां लगा सकते हैं, तो उसमें अपना एक तो अपन तरीका बेरा पड़ जाएगा, एक सिस्टम का बेरा पड़ जाएगा, कितनी पौष्टिक है, कितना न्यूट्रिशन भरी है, कितने दिन में हमने सब्जी मिल जाए है, और बिल्कुल मतलब हल्के फुल्के हुए हैं ये, मतलब कोई ज्यादा बोझ नहीं
1: पड़ रहा। आपने बताया कि भाई पानी में जब उगेगी तो उसमें पानी की मात्रा अपने आप ही ज्यादा हो जाओगी, हल्की भी रहोगी, और दूसरी बात ये है कि भाई इसमें दवाइयों का छिड़काव नहीं करेंगे आप, तो अगली चिंता करने की तभी फिर आपने जरूरत है कौन।
0: हाँ, क्योंकि और गर्मी कहूंगी।
1: हाँ,
0: तो बानर भाइयों का बातचीत और भी करते रहेंगे, इस विषय पर बातचीत भी करेंगे आगे भी, किस तरह आपने सब्सिडी मिल सका है।
1: अच्छा,
0: और के फायदे इस खेती के हुए हैं, लेकिन पहले करावांगे मनोरंजन, तो सुने बानर भाई ये रागनी।

हौसला देने दुखी हो न्यारे न्यारे और घर के मानस लड़िया करे जब गैर बना करे।

0: ये तो सुनी सुनी तबन बाण और वायाना राग में और बातचीत कर रहे थे आप हाइड्रोपोनिक्स एक नई तकनीक के बारे में। तो सबसे पहले तो वायाना कहेंगे कि इस पर प्रशिक्षण जरूर ले ले अगर आपने ये तकनीक अपनानी है तो, और आप बेरा कर लें कि अपने जो सरकार है वो सहायता क्या दे रही है इसके लिए।
1: बिल्कुल विवे, और
0: कई बार अपने बागवानी बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, इनके तहत भी किसान भाइयों ने 50-70% तक की अनुदान सब्सिडी पर अनुदान सहायता मिल जाए है, तो आप जरूर बेरा कर ले। और इसमें आमतौर पर 1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के लिए अधिक एरिया के लिए सब्सिडी प्रदान करी जा रहा है। जो योग्य उम्मीदवार या किसान भाई हैं जो नहीं है उनको परियोजना लागत पर लगभग 50% तक की आर्थिक सहायता मिल जाए। और सबसे पहले तो इसका एक प्रोजेक्ट तैयार कराना पड़ेगा सुनीता बाणापन ये सुविधा लेने के लिए, क्योंकि अपने पास प्रोजेक्ट तो होना चाहिए ना भी हम इस तरह की तकनीक अपनाना चाहवा, इस तरह की खेती करना चाहवा, तो हमारी सहायता करी जावे। और ये प्रोजेक्ट एक दूसरी बात यह है कि अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी या कृषि विभाग तक आपने संपर्क करना है। आवेदन फॉर्म जब आप भरोगे तो आवेदन पत्र के साथ अपना प्रोजेक्ट कोटेशन, जमीन के कागजात है या छत का मालिकाना हक है, छत पर खेती के लिए पहचान पत्र आप अपना जमा कर सकते हैं। और बैंक लोन और सत्यापन के लिए फार्म और प्रोजेक्ट को बैंक और लोन के लिए भेजा जाएगा। बैंक और कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी आपके खाते में जारी कर दी जाएगी। तो कितनी लागत की कोटेशन आप कितने एरिया में आपने करनी है उस तरह से अपने एक बार कृषि विभाग तक जरूर संपर्क कर ले।
1: तो सुविता भैया तो आपने बहुत अच्छी बन भैया जानकारी दे दी है। और सबसे बड़ी बात तो सुविता भैया इसमें यह है कि पहला तो अपन आपने सही बताई है कि अपन इसकी ट्रेनिंग का जरूर सोचना चाहिए, दूसरा फिर अपन इसकी कितनी लागत आओगी, कितनी इससे आमदनी होगी, इसकी

0: करना पड़ेगा।
1: शुरुआत में तीन तरह की तकनीक हुए हैं, एक हुआ है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, इसमें पौधों की जड़ों के ऊपर तपोषक गोल की एक पतली परत फिल्म लगातार बहती रहा है,
0: मतलब एक नाड़ी में वो पानी चल लगा
1: चलता रहेगा,
0: तो हाँ। जो गोल है वो चलता रहेगा।
1: हाँ, है डीप वाटर कल्चर, इसमें पौधे की जड़ें सीधे पोषक गोल से भरे पानी में डूबी रहे हैं,
0: खड़ा रहेगा पानी में,
1: एयर पंप द्वारा जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाए। तीसरी है वर्टिकल फार्मिंग, इसमें पाइपों को टावर की तरह ऊपर नीचे लगाया जा रहा है, जिससे कम जगह में बहुत ज्यादा फसल उगाई जा सका है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह में इसमें जो सामग्री है अपन के चाहिएगी, हाइड्रोपोनिक ट्रे या पीवीसी पाइप, वाटर पंप, एयर पंप, इस तरह की सामग्री अपन चाहिएगी, सीड ट्रे, ग्रोइंग मीडिया, कोको पीट है, रॉक बुल है, इस तरह की सामग्री अपन चाहिएगी। इसमें सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी के टैंक और पाइपों में धूल ना जमे, वरना काई या शैवाल पनप सके तो इससे पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए है।
0: हाँ बेबे,
1: सिस्टम की सफाई अपना करते रहनी पड़ेगी हर फसल चक्र के बाद, हर 2-3 सप्ताह में टैंक पानी का टैंक बदलकर पूरे सिस्टम को हाइड्रोजन प्रोडाइक्साइड या अन्य सुरक्षित क्लीनर से साफ
0: करना पड़ेगा बेबे।
1: हाँ,
0: और सुविधा बेबे, ये तो देखो सारे काम हम जरूरी हो गए हैं अपन ने, कि पानी का साफ सफाई का इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है टाइम के साथ साथ। तो सुविधा बेबे,
1: तो इसमें पोषक तत्वों का तो सिस्टम बढ़िया रहा है, क्योंकि जैसे इसमें पोषक तत्व 16 पोषक तत्व है जो अपन जो सिस्टम ये जमेगा तो उसमें पोषक तत्व अपने फसल में सब्जियों में मिलते रहेंगे, और न्यूट्रिएंट तो भरी सब्जी हो है जो हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में भी मदद करेगी।
0: और ये तो सुविधा बेबे आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने बड़ भैया ने दी है, क्योंकि जरूरी बहुत है आज का दिन, क्योंकि जिस डाल से अपने किसान भाई खेती बाड़ी करने लग रहे हैं, और उसके साथ साथ बदलाव की भी जरूरत है, आधुनिक खेती की भी जरूरत है, और नई तकनीक अपनाने की भी जरूरत है।
1: हाँ।
0: और अपन जमा शुरुआत में भी बात करी थी कि बहुत सारी डाल के काम किसान भाई करने लगे हैं साथ में, क्योंकि खर्चा पानी का ज्यादा आजकल बढ़ रहा है।
1: हर लगभग किसान भाइयों ने अपने साग धंधे अपना लिए, किसी ने डेयरी फार्म कर रखा है, किसी ने बागवानी कर ली, किसी ने सब्जी लगा ली, जरूरी भी है, क्योंकि सब्जी की जो फसल है नकदी की फसल है, जल्दी पक्के तैयार हो जाए, 45 दिन में अपने फसल हाथ में आ जाए तो अपन बेचनी शुरू कर, नगद पैसे हो, नगद आमदनी।
0: और आजकल सुविधा विभिन्न भी कोनी की बहुत ज्यादा मंडी में जाने की भी जरूरत है, आप अपनी खेती के साथ साथ एक आधी कनाल में छोटी मोटी खेती करने लग जाए तो वह अपनी बात है कि रोज की नकदी आंदी रहे घर में, रोज का खर्चा साथ के साथ अपना निकलता भी रहा है।
1: और जिन भाई ने ऑर्गेनिक रखी है ना सब्जी लगा रखी है, उनके तो ऑनलाइन भी आजकल ऑनलाइन भी
0: बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन मांग बहुत बढ़ रही है,
1: बढ़ रही है। और गाँव भी अच्छा मिल जाए है और फायदा भी उनमें अच्छा हो जाए।
0: और इसका देखो सुविधा विवेक, एक चीज और भी है, अगर आप साग सब्जी है या फिर फल फ्रूट लगाने लग रहे हैं, फल के पौधे अपने पास लग रहे हैं, तो उससे तो उन्होंने कहा करा कि अड़ोसी पड़ोसी का भी सारा विवेक
1: बहुत गणा, क्योंकि देखो में कई बार अपन कह दें कि संतुलित आहार लेना चाहिए, अभी सलाद लो, फल लो, मौसमी, तो कई बार कहने में आ जाए है कि भी नहीं लिया जा सकता, नहीं पूजा जा सकता, और बात भी सच्चाई है, क्योंकि सारा दिन काम धंधा में इतने व्यस्त रहो, अपने खेत में ही जब हम लगा ले आना तो पकेगा फल तो अपने आप ही जी करेगा, खाया भी जाओगा।
0: अब मैं तो यह कहूँ आप भी खा लेंगे, अपने परिवार के सारे लोग है, रिश्तेदार है, पड़ोस के है, अड़ोस के है, देखो यह मैं सबका सिर हुआ, तो इसलिए यह सही बात है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से बन भाई अपनी खेती करो, नई नई जितनी भी तकनीक है उन सब का फायदा बिठावा। और सरकार ने तो देखो आजकल बहुत सारी चीजें पर सब्सिडी कर रखी है,
1: करने
0: अपने जो प्रोग्रेसिव जो फार्मर है, जो प्रगतिशील अपने किसान है या फिर ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं, उन सारे किसान बन भाइयों का देखो बार बार अपनी यूनिवर्सिटी जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें ट्रेनिंग भी होती रहा है। और आजकल तो अपने यूनिवर्सिटी वाले जो डॉक्टर है उन्होंने अलग अलग फार्मर्स के ग्रुप भी बना रखे हैं, ताकि उनमें सारी तरह की जानकारी भी वो डालते रहे हैं, अपने डंगर पशुओं खातर भी डालते रहे हैं कि इस मौसम में अपने के उनका ध्यान रखना है, या फिर कौन सी फसल किस टाइम पे उसकी बिजाई करनी है, कब उसकी कटाई का टाइम है, ये बापा ने उसमें कौन सी दवाई डालनी है। और आजकल तो सुविधा बेबे जो फोन ना कि आप बात करा थे ना, उसका इतना फायदा हो रहा है कि अपने किसान भाई आपके खेत में तो फोटो खींच के भी आपकी फसल की बेचते है ना।
1: हाँ।
0: कोई भी पेड़ पौधे की इस पौधे में यह बीमारी आ रही है, इसमें ये कीट पतंग आ रहे हैं, तो उनका भी अपने डॉक्टर फोन पर उनको समाधान बता
1: दे, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी के

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम मारे गांव।

संसार की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: कार्यक्रम मारेगा मैं एक बार फिर सारे बन भैया का स्वागत कर रहे हैं सुनीता बान
1: और सविता बान।
0: तो सुनीता बेबे आज आप बात करेंगे बढ़ती गर्मी का मौसम स्वास्थ्य स्वस्थता और पोषण
1: के बारे में,
0: क्योंकि बेबे अपन जिक्र भी कर रहा था कि गर्मी का तो जमा चाड़ा पैट रहा है और आपने बता दिया कि बेबे दो जेठ से तो इबे तो तैयार हो लो या तो कई दिन चल लगी।
1: हाँ, क्योंकि गर्मी देखो पूरी बढ़ रही है।
0: हाँ।
1: और एक बार क्या करे ना, मौसम बदलाव हो तो बीमारी घेर ले है।
0: हाँ।
1: क्योंकि गर्मी इतनी है कि लू में तो बाहर आ गई, पसीना ना पानी पी लिया।
0: हाँ।
1: बच्चे भी को नहीं ध्यान रखा, ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, खान पीन का भी को नहीं ध्यान रखा, क्योंकि हर चीज आप फ्रिज में रख दे। हाँ। उसने निकालते ही काट के खा ली, तो उस तरह की छोटी छोटी गलतियां हमने बहुत परेशान कर दे हैं और पूरा बीमार होने का खतरा बढ़ जाए है उन दिनों में, क्योंकि ये करड़े हुए हैं सुनीता बानी ये दिन पाचन की
0: करड़े बोर हो गए, बालका की छुट्टी हो गई। तो अपना तो छोटे बालका का एक चैलेंज यू भी रहोगा बेबे की भीतर क्यों कर रखा गर्मी का मौसम है
1: और खान पान का भी उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
0: हाँ,
1: पहले तो वो लिमिट में खाया करते, स्कूल में कुछ खा पी के स्कूल। हाँ, चले गए, फिर लंच में खा लिया, फिर आके जैसे तो ही वो सारा दिन घर में रहेंगे तो हाथ भी क्या है ना उल्टा सीधा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
0: हाँ बेबे,
1: गर्मी तो भी बचाना है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है और उनके पोषण का भी ध्यान रखना है। तो और इन दिनों में देखा है ना, बात साफ सफाई की करा, तुझे कितनी साफ सफाई कर ला, धूल मिट्टी इतनी आया है।
0: जिस दिन अच्छा जोर लाके साफ सफाई कर ले उस दिन ध्यान दिया जी।
1: हाँ, तो इसमें साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि धूल मिट्टी मक्खी मच्छर मतलब सारा सिस्टम इकट्ठा हो जाए।
0: बिल्कुल बेबे, तो इसलिए जरूरी है कि भाई थोड़ा सा अपन
1: ध्यान रखें, क्योंकि इतनी गर्मी है तो सबसे पहले अपना पानी का जरूर ध्यान रखें, शरीर में डिहाइड्रेट ना होने दे, पानी पीते रहे टाइम पे, जैसी प्यास लगे ज्यादा ठंडा ना पीवे, मटके का पी ले।
0: बिल्कुल बेबे, मटके जरूर लगा के रखने हैं और सबसे ज्यादा सुविधा अपना खेत के आर में जाओ जो ध्यान रखने की जरूरत है बेबे।
1: हाँ, और कब भोजन करना है, क्योंकि इन दिनों में जो पाचन क्रिया है ना वो दिन तो बड़े हुए हैं बहुत ज्यादा लागे है, लेकिन पाचन क्रिया थोड़ी और डाल की हो जाए है तो एजा होने का भी खतरा हो जाए है।
0: हाँ, कई बार
1: हो जाए है।
0: बिल्कुल बेबे, ये ज्यादा खाए जे हैं पानी के चक्कर में, फिर बालक जो साथ में पानी भी पी ले बेबे।
1: और कई बार हम ये चीज भी नहीं ध्यान रखते कि आपने इस चीज का खाना तो तकलीफ हुआ है तो भैया बंद कर दिया, उस चीज की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे खाना पीने में भी गड़बड़ हो उसका है, क्योंकि हम अपना जीव का स्वाद देता है, जो चीज अच्छी लगे वो हम खाना तो चुका को नहीं।
0: बिल्कुल बेबे,
1: और दो तीन दिन में अगर खाना तो कोई दिक्कत आपने होने लग रही है, किसी तरबूज था खरबूज जाता या कोई ईसा भोजन खा लिया गरिष्ठ आपने, तो उसने तुरंत बंद कर दे। और कोशिश यह करें कि अगर कोई भी गड़बड़ है तो थोड़ी देर भूखा रखे अपने शरीर ने, उसमें तो बहुत रिकवर हो जाए है।
0: तो आप न्यू कहना चाहो भाई गर्मी का मौसम आ रहा है, अपना सांझ ने भी बहन देखो दिक्कत भी को नहीं आओगी, खिचड़ी बना ले दलिया बना ले अपना,
1: हल्का भोजन करे,
0: सांझ का भी काम चल गया सविता और तड़कन का भी चल
1: जाए, हल्का हल्का भोजन करें, भूख तक कम खावे और इसके अलावा आप नींबू पानी पी सके हैं, नारियल पानी पी सके हैं, लस्सी ले सके हैं, ताकि शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका स्तर बना रहे।
0: बिल्कुल बेबे, और जब भी
1: तली हुई चीजें ना खाना, क्योंकि आजकल देखा कि बच्चे तला हुआ या बाहर का खाना ज्यादा पसंद करे हैं।
0: और बेबे छुट्टी हो गई है आपने बताई थी,
1: गर्मी में अगर बाहर निकल गया और कहीं भी आइसक्रीम वाला दिखा
0: हाँ
1: तो बच्चे जरूर खावे, खाते ही बीमार हुए
0: ना सविता, बाहर जाने की जरूरत को नहीं, आजकल तो घर का आगे आ जाओ है,
1: घर का आगे भी आ जाए, ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाए।
0: हाँ चलो, ऑनलाइन वाले तो इतने अपने गम हम को नहीं पुगते।
1: हाँ।
0: फिर भी शांत सवेरे तो देखो बेचारे आइसक्रीम वाले भी तो आम जाओ है।
1: हाँ। बासी चीजें खाने तो हमने परहेज करना है, क्योंकि देखो गर्मी में चीजें जल्दी खराब होने का खतरा रहा है। और कई बार हम देखा कि यूं सोच ला बचा पड़ा है खा ले रहे हो, खराब हो रहा है ध्यान ना दिया तो उसमें बहुत बीमारी का चांस बढ़ जाए। और इनमें सलाद आप जरूर ले, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज खरबूजे, जो भी आपने यू मौसमी सलाद है फ्रूट है वे जरूर खावे,
0: और प्याज भी जरूर खावे।
1: हाँ,
0: गर्मी में तो देखो न्यू कमा है कि आप किमे ना लेके जाओ, चाहे एक अंगूठा, एक पानी की बोतल और एक प्याज।
1: हाँ, क्योंकि और ज्यादा कर ऐसा काम करना हमने 12 से 4 बजे के बीच बाहर ना निकला।
0: हाँ,
1: कोशिश काम करना सुबह के करें, 11:30-11 बजे तक कर ले, शाम वाले 4 बजे के बाद कर ले, 12 से 4 आप आराम कर ले,
0: मतलब आराम कर ले घर के भी तेरे काम से बेबे,
1: फिर भी जो करड़ी धूप में निकलना पड़े तो छत्ता लेके जावे, चश्मा पहन ले या अंगोछा ले ले, मतलब अपना बचाव अपन ही करना पड़ेगा।
0: चुंबड़ी भी जरूर रखनी चाहिए
1: जरूर। सही, कपड़ों की अगर बात करा तो सूती पूरी बाजू के कपड़े अड़के ढीले डाले सूती कपड़े आमान पहनने चाहिए ताकि आराम से सांस ले सका, पसीना आवे तो भी आसानी तो सूख जाए। ले छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस गर्मी ने भी निकाल लिया।
0: और ब्याह शाले हो गर्मी से अभी तक में इसी बात को नहीं है, अपन फिर भी न्यू है कि हर बार तापमान बढ़ता जान लग रहा है तो जरूर चिंता की बात है।
1: कई बार देखा कि सुनीता इतनी गर्मी में बाण और भाई तेज सिर दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, उबकाई आ जाए, लेकिन ध्यान नहीं देते वो, जी मचलाव है, गर्मी महसूस हो रहा है, तो इसने अड़का में नहीं लेना अपन।
0: बिल्कुल,
1: अपना तुरंत अपना जो भी
0: नजदीक
1: डॉक्टर हो तो संपर्क करके अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे।
0: बिल्कुल बेबे, तो सुनीता बेबे स्वास्थ्य का बाण भाई भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे, और रोटी पानी का टाइम हो रहा है, बाण भाई रोटी खाते खाते देखो इन्हें बाट देखा करे कि भाई
1: मनोरंजन हो जाता
0: है, मनोरंजन भी बेबे तो बातें बात सुनान लग रही है आज
1: तो करवा दें बाण और भाई का मनोरंजन, तो सुनाइए लोकगीत।

0: श्वेता बाणी, ये तो सुनया भैया ने फिल्म में गीत। और देखो गर्मी का मौसम आ रहा है, अपनी सेहत स्वास्थ्य का अपन सारा जरूर ध्यान रखना है बेबे।
1: हाँ जरूर। और देखो घड़ी की सुई सारा कर रही है कि कार्यक्रम मारे गांव का समय समाप्त होने लग रहा है। तो अपनी बहन सुनीता ढांडा ने
0: और सुनीता बाणना दे इजाजत, कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भैया ने
1: राम राम, राम।

आपका इंतजार, आपका प्यार, ये है आप सबका ख्वाब। आकाशवाणी हिसार, FM बैंड 102.3 MHz पर।

पेशे खिदमत है कार्यक्रम फिल्म संगीत और नगमों के इस गुलदस्ते को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आपकी निगाहों का अंदाज़े बयां भी बेहद खूबसूरत है। हमारी निगाहों में देख लेती हैं अपना अक्स हर बार, और हमारी नज़रों को ये इजाज़त ही नहीं देती एक बार कि वो पढ़ लें अपने आप को उन निगाहों में, जो झुक जाती हैं ये कहते हुए कि हमको है आपसे प्यार बेशुमार, कि आपको देखते हुए ज़माना गुजर गया, अब इन निगाहों में कोई ठहरता ही नहीं।

दोस्तों, दिल ही एक वो जगह है जहां से सारे एहसासात होकर गुजरते हैं। गुजरते क्या हैं, बल्कि कहना चाहिए कि वहीं ठहर जाते हैं। दिल में तो हर तरह के एहसास भरे होते हैं। वो गम है, मिलन है, खुशी है, दुख है, ईर्ष्या है। सभी की पनाह कहा दिल है। आप पहलू में जो बैठें तो संभल कर बैठें। दिले बेताब को आदत है मचल जाने की।

साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। और ये पेशी खिदमत है बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत नगमा।

तुम्हारी आंखों की बात क्या कहूं, क्योंकि तुम्हारी आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि ये तो बिना इजाजत के मेरे दिल को चुरा लेती हैं, क्योंकि एक तुम्हारी ही तो आंखें हैं जिसमें पूरी कायनात की सच्चाई बसती है। ये तुम्हारी ही आंखें हैं जो बिना इजाजत के मेरा दिल चुरा लेती हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से किया गया। FM बैंड 102.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। श्रोताओं, अब पेशी खिदमत है कार्यक्रम खुला आकाश के तहत एक फिल्म से नगमे, और आज जिस फिल्म को हमने आप सबके लिए चुना है उसका नाम है कर्तव्य।

श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 1979 में आई फिल्म कर्तव्य के नगमे। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और रेखा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म के गीत अपने समय में बहुत हिट फिल्म गीत थे, लेकिन आज भी इस फिल्म के गीतों को बहुत पसंद किया जाता है। पहले सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं 1989 में आई फिल्म कर्तव्य के गीत। श्रोताओं, इस फिल्म के निर्देशक थे मोहन सहगल और काम करने वाले मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, रेखा, विनोद मेहरा और उत्पल दत्त। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और अपने समय में इस फिल्म की कहानी और गीत सभी सुपरहिट हुए थे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

हजार की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90

श्रोताओं, खुला आकाश के तहत आज आपने सुनी फिल्म कर्तव्य के गीत। ये प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से किया गया। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती, प्रतीक्षा के बस चंद पल और हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने

0: अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी

0: अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

शुदा गीत आपने सुना फिल्म गुड न्यूज से, आवाजें बादशाह हैडी संधू, लिसा मिश्रा और असीस कौर की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची के और संगीत भी इनका ही था।

0: फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम सिंह की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं।
0: ऐसी अनमोल यादें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में

बेहतरीन काम किया जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याली की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम

रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबोर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती है और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती है। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण।

0: संगीत और बातों की खूबसूरत महफिल में अब शामिल होने जा रही है आपकी आवाज। जी हाँ श्रोताओं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमें इंतजार है आपके संदेशों का, आपकी फोन कॉल्स का, आपकी फरमाइशों का और दिल से निकली उन बातों का जो हमारी शाम को और भी खास बना दी। तो जुड़ जाइए हमारे साथ आप सभी के अपने चहेते कार्यक्रम हालो हिसार में, क्योंकि हर आवाज अपने साथ लेकर आती है एक नई कहानी, एक नया एहसास और एक मीठी सी फरमाइश। आप हैं आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कर रहा है फोन लाइंस के उस पार हमारा इंतजार। हेलो
1: हेलो हिसार।
0: बिल्कुल हेलो हिसार कार्यक्रम है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले मैम आपको प्यारे प्यारे सभी सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या जान सकते हैं हम?
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, यूपी उत्तर प्रदेश ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला चाकू वाले रामपुर से।
0: अमरजीत जी कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और मैं अपना हैंड का जरी का काम करता हूँ, और इस समय मैं अपने गांव से ही बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया से।
0: अच्छा, तो हमारे सुनने वालों को जरा अपने काम के बारे में बताइए अच्छे से, क्योंकि आजकल जो है फैशन जो है दिन पर दिन बदलता जाता है, लेकिन जो हाथ का काम है उसके बारे में बताइए कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से आप तैयार करते हैं शुरुआत से लेके?
1: जो हमारा काम ये रहता है जरी का, जो इस पे रहता है ज्यादातर सूटों पे रहता है मैडम, और लहंगे पे रहता है, साड़ियों पे रहता है, और इसमें जो मटेरियल रहता है वो रहता है जैसे रेशम हो गया, और दबका हो गया, कटदाना हो गया, मोती हो गया, जरकन हो गई।
0: अच्छा।
1: और तमाम प्रकार के मटेरियल होते हैं मैम, और जो हम सुई द्वारा फूल को तैयार करते हैं सिलते हैं, और उसमें एक फूल में 6-7 प्रकार का जब मटेरियल आते हैं तो काफी फूल की रंगत बढ़ जाती है, पसंद आता है।
0: अच्छा, ये तो काम सबको ही बहुत पसंद आता है। बताइए कितने दिन लग जाते हैं आपको एक ड्रेस तैयार करने में लगभग?
1: जैसे एक कारीगर अगर

0: एक सूट को तैयार करें तो कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि 1 दिन लग जाते हैं उसके गले बनाने को और 1 दिन लग जाते हैं आस्तीन बनाने को, और कुछ बीच में काम देना पड़ता है, जो हमारा दामन वगैरह रहता है ना, तो दामन में
1: जी
0: काम देना पड़ता है, तो 2 से 2.5 दिन लग जाते हैं, लमसम 2 दिन मान के चलो।
1: बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, बहुत मेहनत का काम है आपका और आंखों का काम है। अपनी आंखों को दुरुस्त रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और यही कामना करते हैं आपका काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहे। बताइए आज रेडियो पर कौन सा गीत सुनेंगे?
0: जब काफी दिनों के बाद हेलो हिसार प्रोग्राम में मेरी फोन कॉल शामिल हो रही है
1: जी
0: और आपसे बातचीत भी इस प्रोग्राम में जा रही है, तो मूवी का नाम रहेगा इसमें गीत के बोल रहेंगे, यूं अखियां मिला के अखियों से परदेसी मुझे तू लूट गया, ये सुन रहा देना मैम। और मैं इनके सुनने वालों का नाम लेना चाहूंगा,
1: लीजिए।
0: जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब ऋषि पाल हैं, बड़े भाई साहब अमरपाल हैं, छोटा भाई सुखलाल है, छोटा भाई सीएम है बक्सेना, दातागंज से विमल थारू ठाकुर जी हैं, और बरेली से सरनूर
1: चलिए
0: अंसारी जी हैं, और
1: ठीक है
0: फरमान भाई हैं, प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं, साथ में आप हैं अमरजीत में हूँ।
1: जी अमरजीत जी, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अंदाज फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो प्रीति जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
0: जी। राजू जी कैसे हैं आप
1: बिल्कुल अच्छे हैं जी।
0: जी? और बताइए हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: कार्यक्रम तो ठीक है जी। लोकरंग प्रोग्राम हमेशा ही अच्छा होता है जी। रोजाना सुनता हूँ मैं
0: जी
1: जरूर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। राजू जी आज के कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज ये शारदा सिन्हा जो हमारे बीच नहीं रही जी, मैंने प्यार किया फिल्म, और पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया।
0: चलिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत हम सुनवा रहे हैं आपको। सुनिए अपनी पसंद का गीत कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: अरे गांधी चौक आजाद गली पप्पू लाखवाला बोलो, नवलगढ़ वाला। बढ़िया
0: जी पप्पू लाखवाला जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है जी।
0: जी बिल्कुल, गर्मी तो अपने प्रचंड रूप पे है और अभी जून का महीना बाकी है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आप सुनवा जी, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम चुल्हे में भया रे।
0: आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे अपने
1: और
0: कार्यक्रम।
1: दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: जी लीजिए।
1: हाँ, खारिया से मनीष, राजू के वाला, विक्की नाई।
0: चलिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: क्या बात, क्या बात। गुड इवनिंग
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: जी। बहुत एकदम क्या कहूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति डिंडुरिया से मेरा बातचीत हो रहा
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, आपकी प्रीति ढिंडोरिया से बातचीत हो रही है।
1: जी, मेरा मन में सिक्स सेंस ने कह दिया आज प्रीति डिंडुरिया आएंगे,
0: अच्छा जी
1: और वैसे ही माहौल हो गया है ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज हमारे श्रोताओं को अपना नाम तो बताइए।
1: जी, आकाशवाणी हिसार के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनु कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना। तो
0: जी बिल्कुल
1: पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए,
0: बिल्कुल
1: बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए, है ना।
0: बिल्कुल, बहुत खूब अनूप कुमार जी। और इतनी अच्छी
1: जी
0: आप जब बातें बताते हैं, हमारे सुनने वालों तक जरूर एक कोई ना कोई
1: क्या
0: संदेश जरूर जाता
1: बात,
0: है।
1: क्या बात।
0: बी
1: पिछले हफ्ता मैं ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरा भाग्य में तो ये प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि फोन लगाने में बहुत ट्राई किया, नहीं लगा।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आज
0: चलिए,
1: मेरा
0: आज लो लग गया, देर आए दुरुस्त आए, आज आपकी बात हो रही है, बताइए अपनी
1: जी
0: पसंद का।
1: जी तो चलिए, आज गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है हम सब चोर है, और गाने के बोले थे, साली सलोनी तेरी झेली जी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल, ऐसे करके गाने
0: जी
1: हैं।
0: वाह, बहुत
1: और
0: खूब
1: कुछ
0: जी
1: दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
0: जी लीजिए
1: पहले
0: गाना।
1: है हमारे बसंत तिलक सूर्यवंशी जी है, और है विजय सिंह लखेरा जी है, अमर सिंह साहू जी है, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, अनवर बिहारी भाई के लिए, और श्रीकांत जोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, और हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त मेरा सिस्टर है जिसका नाम
0: जी
1: है प्रीति झिंझोरिया जी के लिए, है
0: बहुत
1: ना।
0: बहुत शुक्रिया अनूप कुमार जी, और इसी तरह से अपना प्यार अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। कार्यक्रम में आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार,
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: गांधी चौक से बोल रहा था मैडम, जगह जैसे
0: जी। राजेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैडम, बहुत
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काम तो मैडम अभी थोड़ा मंदा ही है, गर्मी
0: गर्मी की वजह
1: ज्यादा
0: से?
1: है ना, गर्मी
0: जी बिल्कुल
1: में गांव वाले आपसे नहीं सुने जाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए
1: एक गाना था
0: आप।
1: मैडम जी,
0: हाँ, गीत
1: पुरानी
0: ही जानना चाहते हैं हम। कौन सा
1: पुरानी
0: गीत?
1: हेरा फेरी फिल्म का एक गाना था विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन होता है उसमें,
0: जी
1: मतलब दरबार में ऊपर वालों के देर नहीं अंधेरी है, ये तो वक्त की हेरा फेरी।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम में। फोन करने
1: और
0: के
1: ये
0: लिए
1: पिछले
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: वाली हेरा फेरी है मैडम, पुरानी वाली,
0: जी।
1: बहुत बढ़िया गाना।
0: जी कार्यक्रम में फोन किया, धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का खूबसूरत सा गीत।
2: हाँ।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: और
0: आप कौन
1: कैसे
0: बात कर
1: हो?
0: रहे हैं? अपना नाम तो बताइए।
1: मैं तो खाना राम बात कर रहा हूँ। मुझे
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: यहाँ से, ये किसान कॉलोनी से। हाँ
0: जी हिसार से ही बात कर रहे हैं आप?
1: जी, हाँ जी, सारे से। और
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो जी कुछ नहीं करता, मैं तो घर पे रहता हूँ, ब्लाइंड व्यक्ति हूँ मैं तो।
0: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, हमारे रेडियो के कार्यक्रम आप सुनते हैं, हमें बताते रहते हैं कि ये आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी
1: जी।
0: बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
1: आज मेरे को जी ये एक बाप से बेटे फिल्म का गीत सुनवा दीजिए।
0: जी बताइए कौन सा गीत?
1: घड़ी निधन की आई आई तू छुट्टी लेकर आ जा।
0: बहुत प्यारा गीत आप सुनना चाहते हैं। और
1: धन्यवाद
0: जी,
1: आपका।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
1: ठीक है।

0: हेलो।
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैडम जी, चकला बाजार समाना शहर जिला पटियाला पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल जी।
0: पप्पू राजा खुश दिल जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम जी बहुत अच्छे, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपका
0: अच्छा,
1: प्रोग्राम पेश करने का हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। और बताइए, घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: मैडम जी बहुत अच्छे, और हम तो बहुत पुराने श्रोता हैं मैडम जी। वैसे तो
0: बिल्कुल
1: हम 1975 से प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, आकाशवाणी हिसार के लगातार जी।
0: जी, आकाशवाणी हिसार 1999 में बना है।
1: हाँ जी मैडम जी, बाकी सभी आकाशवाणियों पर हम पत्र और व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं जी।
0: जी बिल्कुल, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग इतना समय देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
1: मैडम जी हमारे परिवार के कुछ नाम और हैं जी।
0: जी बताइए।
1: हमारे पापा जी हैं सेठ परसोत्तम दास खुशदिल जी चकला बाजार समाना से, शंकर शंभू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, पप्पू अनमोल खुशदिल, और हमारी बहुत सुंदर पत्नी है संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाना जिला पटियाला पंजाब से जी।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैडम जी पुरानी फिल्म जी, आरजू उसका गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए हम आपका गुलाब के फूलों के साथ चार आकाशवाणी में पूरा स्वागत करते हैं जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू राजा खुशदिल जी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका
1: जी धन्यवाद
0: जी। कौन बात कर रहे हैं हमसे
1: जी। मैं गांव पथवा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आपका नियमित श्रोता राजेश कुमार बात कर रहा हूँ।
0: जी? राजेश जी कैसे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और टीचर हूँ
0: टीचर हैं आप?
1: जी।
0: चलिए, अभी तो छुट्टियां होने वाली हैं।
1: हाँ अभी होने वाली है आपका प्रोग्राम, मैं तभी कॉल काफी दिनों बाद लगाया आज मैंने।
0: अच्छा, काफी दिनों के बाद कॉल लगाया है आपने।
1: जी
0: लीजिए, आपकी बात भी हो गई हमसे और आप अपनी पसंद का गीत भी सुनेंगे।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: गीत से पहले मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा, गर्मियों का मौसम है तो
0: जी
1: हम सभी जीव होने के नाते, इंसान सर्वश्रेष्ठ जीव है तो अपना बचाव तो कर लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा ध्यान दें उन बेजुबान पक्षियों की तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज
1: तो
0: जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी है
1: जी जी
0: जी।
1: जी
0: बिल्कुल,
1: तो
0: हमें
1: थोड़ा
0: पशु
1: सा
0: पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए
1: हाँ
0: जी
1: उनके लिए अपने थोड़ा सा दाना पानी का प्रबंध करें, पानी रखें।
0: बिल्कुल जी, आपका संदेश हमारे सुनने वालों तक और हम तक पहुंच गया है। बहुत बहुत आभार इस अच्छे से प्यारे से संदेश के लिए। अब बताइए आज
1: जी
0: गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज गीत आज सुनवाइए, फिल्म का नाम है पलकों की छांव में, किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी साहब ने गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत
0: जी
1: प्यारेलाल का संगीत है। गीत के बोल है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे।
0: चलिए, अब ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: आज की इस दिलकश बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। आपकी आवाज़ों ने इस महफिल को अपनापन, मुस्कान और खूबसूरत एहसासों से भर दिया। फिलहाल आज का हलो हिसार कार्यक्रम यही होता है समाप्त, लेकिन ये रिश्ता यूं ही बना रहेगा संगीत और दिलों की धड़कनों के साथ। इसी प्यार के साथ सुनते रहिए आप सभी का अपना चहेता कार्यक्रम हलो हिसार। अब आपकी अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया चाहती है लेना इजाजत आज की हलो हिसार कार्यक्रम से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी हिसार के साथ गुनगुनाते रहिए।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

दिल सार की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे गीत और उससे पहले संदेश, और उससे पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निपुनिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Gar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rose Gar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said the new model registrar office will provide facilities such as digital assistant for counters, smart token systems, online appointment booking, real-time application tracking and trained staff to ensure transparent and time-bound service delivery. The centre has released more than 527 crore rupees under the National Health Mission as the first tranche for West Bengal for financial year 2026-27. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today reviewed the healthcare systems in the state during a virtual meeting with Chief Minister Suvendu Adhikari. The Chief Minister also announced that Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. In China, 90 people have been killed in a gas explosion at a coal mine in Shanxi province. The gas explosion occurred at the Liushenyu coal mine in Jinwan County yesterday. The state media reported that 201 miners have so far been rescued while rescue efforts are ongoing. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the loss of lives in a mining accident in China. In a social media post, he extended his condolences to President Xi Jinping and the people of China on behalf of the people of India. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Ikana Cricket Stadium in Lucknow tonight. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants in Lucknow, Punjab Kings made 200 for 3 in 18 overs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs for the loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की यह प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।